फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ।

يسين والقرآن.

فلا يحزن.

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्स।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

101 FM.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो. याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है. नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं. अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें. इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी. वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें. इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं. नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 की

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जे तू लब दा वफा फिर दानी लबनी रुक।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: Coming up next, 101.
1: सुबह के 9 बजे हैं, खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हांगजू में कारोबारी और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान दस्तखत की गई मफाहमत की याददाश्तों को मुआहदों और मुश्तरका मंसूबों में फौरी तब्दील करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ गुलकार मुजीब आलम की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ. AE Power, the ultimate power solution.
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

moving. Hot Wired Radio. Dave's best music. U101. Electric.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई हस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: It's Kaz on the beat.

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

तो मेरे मर्ज की तशखीस में नाकाम थे इसमें। दर्द दिल के करीब था ही नहीं, दर्द तो रू लिए बैठी थी मेरे अंदर। तुम न कर पाओगे दोस्त लाजे वमेरू, बस ये साबित हुआ मौसम के साबित हुआ ना इलाज हो तो।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसुफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपी यूनियन के साथ अहम शोबों में तआवुन के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुसलसल सिफारती राबतों की ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान ने पायदार अमन के लिए फौरी सिफारतकारी और अक़्वामे मुत्तहदा के निज़ाम सालसी को मज़ीद मज़बूत बनाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की क्रिकेट सीरीज का दूसरा एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
2: The channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Hello, assalamu alaikum, assalamu alaikum Pakistan and good morning. This is me, your RJ Zara Noor, and you are listening to Sweet Home Show. Well, janab, mera aur aapka saath rahega. Theek, 1 baje tak, aaj hai Tuesday. Umeed karti hu main tamam sunne wale khairiyat se honge aur jo log is waqt drive kar rahe hain, drive carefully. प्रोडक्शन टीम की बात करेंगे हमारे साथ हमारी प्रोग्राम मैनेजर मैम सदफरानी, प्रोड्यूसर आजम और कोऑर्डिनेटर मौजूद है मलाइका. बहुत शुक्रिया आपका. आज आपके साथ मुझे ढेर सारी बातें करनी है और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा भी होने वाला है. उसके लिए आपको करना ही होगा कि मेरा साथ निभाना होगा 1 बजे तक. और इसके साथ साथ फेसबुक की पोस्ट हमारी कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगी. वैसे आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कि पोस्ट अपडेट करवाने को, लेट्स सी क्या होता है. लेकिन मैसेजेस आपके बिल्कुल मैं शामिल करूँगी. मैसेज करने के लिए आपने ये करना है कि राइट मैसेज में जाएगा, अपना नाम लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, शहर का नाम और पैगाम लिखकर सेंड कर दीजिएगा 4471 पे. और बिल्कुल बिल्कुल मेरे रश्के कमर

क्या बात है जनाब। वैसे जो लोग आपसे थोड़ा सा जो है ना जलस हो रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको आग लगा के ना, वाह वाह वाह क्या मजा आता है। ठीक है जनाब। और अक्सर हमें ये महसूस होता है ना, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग जो कि मुंह पे आपके अपने होते हैं, लेकिन दिल ही दिल में जो है वो सोच रहे होते हैं कि कब इस इंसान का नुकसान किया जाए। अगर आपको भी बार बार ये महसूस हो रहा है कि कोई आपकी तरक्की की रास्ते में रुकावट है, या आप जब भी कुछ करने लगते हैं तो वो आपकी हौसला शिकनी करता है, हर अच्छे मौके पे नेगेटिव बात करता है, आपके इत्मीनान को कम करता है, या आपको ऐसे कामों से रोकता है जो कि आपको फायदा दे सकते हैं, तो सबसे पहले जज्बात के बजाय आपने उसके रवैये को गौर से देखना है, बड़ा बारीकी से जो है ना जायजा लेना है। और हर मशवरे को रोकना ही मुखालिफ करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात वाकई ही लोग हमारे जो फ़ायदे हैं उसको भी खबरदार करते हैं। फ़र्क ये है कि एक मुखलिस शख्स की वजह से काम जो है वो बनते भी हैं और कभी कभी नहीं भी बनते, और अगर आपकी वो बेहतरी चाहता है तो फिर तो वो आपको कभी भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव इंसान है, मनफी शख्स आपके पास है और वो आपको ये कहे नहीं करो तुमसे नहीं होगा, इसका क्या फ़ायदा है, या फिर अच्छा अब हम ही ये काम करेंगे, ये हमारे लिए रह गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं। आपने ये करना है कि जब कोई ऐसा मौका आए कि आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन सिर्फ एक शख्स की राय पर आपने इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आपने मज़ीद उस पर रिसर्च करें, दूसरे लोगों से मशवरा लें। बाउंड्रीज जो है वो आपने ज़रूर कायम करनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर प्लान या आइडियाज़ किसी ऐसे इंसान से शेयर करें, बाज़ औक़ात कम बताना और ना बताना भी बेहतर हो सकता है। और ना है कि क्या वो सिर्फ आपको रोकता है या सबके साथ ही ऐसा करता है, क्या वो आपकी कामयाबी पे खुश होता है या बेचैनी महसूस करता है, ठीक है। जब इसमें ये होता है ना कि वो बेचैनी जब कोई ऐसे इंसान महसूस कर रहे होते हैं, तो फिर डार्क साइकोलॉजी जो है ना वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं आपके साथ, नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, समटाइम आपको धमकियां भी देंगे। ऐसे में आपने अपने कॉन्फिडेंस को जो है ना वो कायम रखना है, उसको मजबूत रखें। अगर आपने सोच समझ कर फैसला किया है तो दूसरों के खौफ या फिर मनफी सोच को अपनी सलाहियतों पे कभी भी हावी ना होने दें। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी कामयाबी से खुश होते हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं, और जो लोग आपकी कामयाबी से परेशान होते हैं वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट हो या आप ज़िंदगी में कामयाब हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसलिए कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान का या अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना भी किसी नेमत से कम नहीं है, और मेरे ख्याल में ये बहुत कम हो गया है। आप जो अपने लिए ठीक समझते हैं आपको वो ज़रूर करना चाहिए। लाइफ आपको मिली है, आपकी ज़िंदगी है, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी। तो कभी भी किसी मैं तो यही समझती हूँ कि कभी किसी दूसरे इंसान के जो डिसीजंस है ना वो आप पे हावी ना हो, बल्कि आप खुद सोच समझ सकते हैं, आप मैच्योर हो तो आपको खुद सोच समझ के फैसला करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके माँ बाप आपको किसी काम से किसी बात से रोक रहे हों, तो फिर आपको उस चीज़ से रुक भी जाना चाहिए और उनकी बात सुननी भी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि माँ बाप से ज़्यादा सिंसियर आपको इस दुनिया में कोई इंसान मिल ही नहीं सकता। अगर ढूंढ सकते हैं तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपसे बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी रिटर्न के कि आप कुछ उनसे अच्छा करें या कुछ भी ऐसी चीज़, वो ये नहीं सोचते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो खुश रहें, वो ज़िंदगी में कामयाब रहें, उनको कोई मुश्किल ना आए, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं आपसे इसलिए भी डिस्कस करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो है फ़ायदा हो सके, ठीक है जी।
वेल यहाँ पे एक ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ पिया रे पिया, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज में। उनकी आवाज आज भी उन जैसी आवाज मुझे सुनने को कभी भी नहीं मिली दोबारा। वो उनका अंदाज और उनकी आवाज, मेरा नहीं ख्याल कि हमें दोबारा कभी भी सुनने को मिल सकती है ऐसी आवाज़।

बिल्कुल जनाब, और अक्सर ये होता है कि जब कोई इंसान चला जाता है छोड़ के, तो तब भी ये होता है कि कहीं पे दिल लग नहीं रहा होता, और ऐसी सिचुएशन में कि जब किसी इंसान के साथ एक आपका जज्बाती ताल्लुक हो और आपकी ज़िंदगी से वो जब चला जाता है, तो उदासी, खालीपन या फिर उसका याद आना, दिल बार बार भारी रहना और उसके बारे में बार बार सोचना एक आम रद्देअमल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं या सिर्फ इस बात की निशानी है कि वो ताल्लुक जो है आपके लिए बहुत अहम था। इससे निकलने में कितना वक्त आपको लग सकता है और इसका वैसे कोई मुकर्रर वक्त तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो हैं चंद हफ्तों में बेहतर महसूस करने लगते हैं और बाज़ूकात कई महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी और हालात पे डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर मतलब जो मैंने रिसर्च की थी इस हवाले से, तो उसमें ये था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, तो आप लेकिन उदासी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि अपने जो जज्बात हैं उनको दबाने के बजाय आप कबूल करें कि अगर आपका दिल उदास है तो आप ये इजाज़त दें कि आप उदास महसूस कर सकते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको बरकरार रखने की भी आपने कोशिश करनी है। वक्त पे सोना, खाना पीना, हल्की सी एक्सरसाइज भी करें, वॉक करें, और जो सैड रोने धोने वाला म्यूज़िक है ना, उससे तो आपने 6 महीने के लिए बहुत दूर चले जाने। ठीक है, आपने सैड गाने बिल्कुल भी नहीं सुनना और ना ही आपने ख़ुद को बेचारा या बेचारी महसूस करना है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपके काबिले एतमाद दोस्त हैं, ख़ानदान के फ़र्द, उनसे ही आप बात कर सकते हैं। दिल की बात शेयर करने से क्या होगा कि आपके दिल का बोझ हल्का होगा, लेकिन ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि ख़ानदान में जिससे बात करने जा रहे हैं वो पूरे ख़ानदान में फैला तो नहीं देगा, पता चले सबको पता चल जाए और फिर जो है ना सब आ रहे हो कि अच्छा ये हो गया, ऐसे काम किए क्यों, ऐसी हरकतें हैं। इसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट के काम करें या नई जो चीज़ें हैं, नई स्किल्स सीखने की कोशिश करें, उसमें वक्त लगाएं ताकि आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव सोचने में और पॉजिटिव चीज़ें करने में मसरूफ़ रहे। अगर आप बार बार पुरानी यादें आपको तकलीफ़ देते हैं, तो कुछ वक्त के लिए ऐसी चीज़ों से आपने दूर रहना है जो उस इंसान की आपको मुसलसल जो है वो याद दिला रही हो। मलाइका मुझे ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं खुदा ना खौस्ता क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा। ठीक है, और शफा का वैसे मतलब ये नहीं होता कि आप फौरन से भूल जाएं, अक्सर शफा का मतलब ये होता है कि याद तो रहती है लेकिन वक्त के साथ साथ इस याद से होने वाली जो तकलीफ़ है वो कम हो जाती है। मेरे ख्याल में शायद आदत हो जाती है, इस वजह से हमें वो फिर तकलीफ़ नहीं लग रही होती, और ये कहा जाता है ना कि वक्त से बड़ा मरहम जो है वो कोई नहीं है। और जनाब ये बातें साथ साथ चलती रहेंगी, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी बात करूँ।

एक ट्रैक सुनते हैं, और ट्रैक है जनाब, बहुत अरसे के बाद मैं ये ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ. ट्रैक टाइटल इज बीबी शीरीन ने मुझसे किसी ने पूछा था कि पश्तो गाना चला दिया, पख्तून है आप क्या? पश्तो में कमेंट्स किए जा रहे थे जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गए.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

0: वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन, और बात करेंगे हसद के हवाले से. और
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव एफएम 101.

0: coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ अहम शोबों में तआवुन के फरोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया है। सदर मुमलकत ने इटली के सदर और अवाम को यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद दी है। जिला शांगला के इलाके कुजालपोरी में आज सुबह एक मकान की छत गिरने के नतीजे में 6 बच्चे जान बहक हो गए। अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान ने तवील मुद्दती तनाज़ात के फैलाव और उनके सरहदों से मावरा असरात के खतरात से खबरदार किया है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Big socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

जी जनाब, बड़ा ही खूबसूरत जिहा ट्रैक तुसीं सुणदे हो पे और बड़ा अच्छा लगता है। कदी कदी जिहड़ा ना वह यारी जिहड़ी इक हुंदी सच्ची, इक हुंदी कच्ची यारी, और कच्ची यारी वाले भी जिहड़े ने जी हाईलाइट कर देने चाहिए ने, और पक्की वाले भी। खैर, ये चीज़ा जिहड़ियां ने नालों नाल चलदियां रहिंदियां। और अज दा जिहड़ा साडा अखान है कि जिहड़ियां ना वह ढिड रज जांदा, अखां नहीं रजदियां। इहदे ते तुसीं आ के गलबात करो। कुछ लोग जिहड़े ना असीं खाने के हवाले के नाल जिहड़ा ना असीं गलबात करिए, या वैसे जिहड़ा ना उंज ओवरऑल जिहड़ा ना तुसीं देखो, लालच जिहड़ा ना, लालच और जिहड़ा बुगज़ है जिहड़ा अक्सर रुका जिहड़ा तुसीं कुछ लोग जिहड़ा ना वह जिन्ना उन्होंने अंदर एक हुंदी है कुछ है इस तरह की, उन्होंने दिल करता सानू जिहड़ा ना होर मिल जाए, होर मिल जाए, और थोड़ा थोड़ा करदे आ तुसीं जिहड़ा ना उन्हां दीआं अक्खां जिहड़ियां ने वह नहीं रजदियां है। असी खाने के हवाले नाल देख लीए, असी किसी जिहड़ी ना सहूलत के हवाले दे नाल देख लीए कि किसी वास्ते तुसी आसानी किसी वास्ते तुसी पैदा करो, तो अक्सर उकाज जाया ना लोग फिर जाया ना वो फिर ज़्यादा अक्सर उकाज कुछ लोग जो उन्होंने तुसी थोड़ी जी नेकी करो वो मजीद जरा तुसी जो नेकी जरा तुसी करते हो तो आटोमैटिकली फिर जो लोग तुहाडे तो हौली हौली एक तो दूर होंगे ने और एक लालच जरा ना जी वो पैदा होंगे। और ये चीज़ा जड़ियाँ सानू अपने एक दूसरे के नाल जो रहना हो, बहना हो, उठना हो, अपनी जात की जी लोग नफ़ी करके जींदे ने, जेडे अपनी जात को नफ़ी कर देंगे ने, माइनस कर देंगे ने, वह लोग हमेशा जरा असी देखिया कि वह अगे लंघे ने। कुछ लोग जिन्होंने हमेशा अपनी जात को तरजीह दी, हमेशा अपनी मफाद में उन्होंने जनाबे की तरजीह दी, उन्होंने देखा कि साड़ी ये जी ना वह जनाब की सानू लभ रहा, किसी का असी भला कर रहे हैं तो सानू की मिल रहा, किसी जरा ना असी नेकी कर रहे हैं किसी से तो सानू जनाब वो की मिल रहा। दिल दे के दिल लै लैन की जी ना वो आस नहीं रखनी चाहिए। दिल होवे कोई जनाब रिवार्ड होवे, कोई मुफाद होवे, कोई ट्रस्ट होवे, कोई भी चीज़ जी ना मैं समझना ये ताल्लुक जड़े ने ये पाक होने चाहिए ने, मुहब्बत जड़िया ने पाक होनी चाहिए। मुहब्बत के जरा ना कोई भी इस तरह इतजारत नहीं होंगी है कि कोई शायद तुम्हें दी तो कुछ है, हमेशा इज्जत मुहब्बत और जो एक नेकी साढ़े ना बड़े ही प्यारे जो साढ़े वीर ने जनाब साढ़े माशाल्लाह सीनियर और जिन्हें और साढ़े बड़े प्यारे जे वीर ने जनाब मसूद अहमद साहब जनाब सानू सुन रहे ने, आर जे डी जे और वीजे साढ़े जनाब जिन्ना मसूद भाई बड़े ही प्यारे भाई ने और बड़े क्यूट और बड़ा अच्छा जनाब इन्हों का जरा ना लहजा बड़ा धीमा जहा जरा ना आते नहीं बिल्कुल जरा ना जी वो चुप चुपीते ज़्यादा रेंदे ने, और जोड़े लोग जरा ना ज़्यादा चोपर मन वो फिर जो फिर अच्छा प्रोग्राम करते हैं ना कमाल जनाब अक्सर कत आम लाइफ के चुप रेंदे जिमें हूँ असी हाँ तो मैं अपनी अगर गल करा तो मैं ज़्यादा बोलता रहना और मैं कहना कि चलो कोई गल नहीं जो टाइम है वो अच्छे तरीके दे नाल असी गुजारे वो भी अच्छा गुजारते हैं लेकिन वो इतना वाफर नहीं बोलते और जो प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह जनाब मुढ़ बन देंगे ने और सानू ये भी सादत हासिल है कि असी मसूद भाई के नाल जाना असी प्रोग्राम किया हो माशाल्लाह कहते हैं गोइंग वैल जनाब बड़ी मेहरबानी सलामत रहो तुहाडी जनाब दात जी एक शायर एक प्रजेंटर कोई भी इंसान है वह जनाब अपनी तरीफ का भुखा हों अपनी दात जी अगर लभ जाए तो वो हौसला अफजाई होंगी वह आंदा मैं कुछ चंगा किया जो थोड़े जे वे लोग परमे लोग जनाब वो साढ़े नाल इस तरह प्यार मुहब्बत का इजहार करन तो मैं कहना कि दिल नहीं चाहेगा वधिया तो वधिया प्रोग्राम हो। नज़ीर खोसू साहब जनाब तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, कहिंदे सोबतपुर बलोचिस्तान तो मैं जनाब तुहाडे नाल मौजूद हाँ बड़ी मेहरबानी। सज्जाद राणा साहब साढ़े नाल मौजूद ने, क्या बात है जनाब, कहिंदे तुहाडी ईद किवें दी लंघी। ईद बिल्कुल जनाब वधिया लंघी है और साढ़े नाल मल्लू पिंड जनाब उत्थों शेर अफजल साहब जनाब साढ़े नाल मौजूद ने, कहिंदे ने मैं तुहाडा प्रोग्राम सुनना अगे भी सुनता रहना लेकिन अज जिहड़ा ना साडी काल जिहड़ी उह लग गई है और बड़ा चंगा जनाब साढ़े वास्ते भी है, असीं वी आने कोई नवें नवें परौने सानू सुनन और जिहड़ा उहनां कहते ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੇਰ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਰੀਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FM 101 ਲਾਹੌਰ।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

up next, 101 News Headlines.

This is FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बरामदाद और मुल्की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर पॉलिसी इकदामात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर मुआसलात ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मानसेरा से चिल्लास तक मोटरवे तामीर करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैन अलाक्वामी क्रिकेट मैच लाहौर में जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती है एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
3: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: This is FM 101.
2: 13 June, PC Hotel Lahore, aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
4: Tune in to one above, FM 101.
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज़ पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101।
1: 13 जून, PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: अब उसको पढ़ता है उसके बाद कहता है कि यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मेरी ज़िंदगी पे आया हुआ ऐसे, तो ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं, ये क्या हर शायर के साथ ऐसे होता है कि किसी किसी को अल्लाह ने अता की होती है?
1: मैं समझता हूँ कि शायरी खुदा की नेमतों में से ख़ास नेमत है जो बहुत चुनिंदा लोगों को खुदा अता करता है। शायर की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि शायरी जो है वो मुआशरे का बग़ैर लिखा हुआ कानून होती है, मुआशरती ज़िंदगी का निसाब होती है। तो शायर जो इर्द गिर्द देखता है, महसूस करता है, जो इंसानी रवैये हैं, जो लोगों का रहन सहन है, जो दरपेश मसाइल हैं, उन पर अमीक गहराई से नज़र डालता है और उसके बाद जाकर उसको लफ्ज़ों का पैरहन देता है। ख्याल जो होता है वो कुदरत की अता है, वो रिस्क है आपका, और वो शायर को अल्लाह ही अता करता है। उस ख्याल को लफ्ज़ों का पहरहन शायर अता करता है। तो शेर जब ख्याल जब शेर के पहरहन में ढलता है, लफ्ज़ों के पहरहन में ढलता है, तो वो क्या खूबसूरत बन पाया है या बदसूरत, इसका फ़ैसला बाद में किया जाता है। तो शायर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी तख्लीक करे, ऐसे मौजूआत चुन कर लाए, एक ऐसा मंज़र ढूंढ कर लाए जो बज़ाहिर तो सामने हो लेकिन वो दिखाई ना दे रहा हो।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो जब मुआशरा शायर की आंख से देखता है तो उसका लुत्फ दुबाला होता है। वो सारे लोग कह उठते हैं कि सामने की बात थी लेकिन हमारी नज़र से हो जाती।
0: अरे वाह। अच्छा, आपने कहा शायर जो है वो ऐसी चीज़ लेके आए जिसको वो लिखे तो देखने वाले या पढ़ने वाले के लिए वो लगे कि मेरी अपनी ज़िंदगी है। क्या शायर कोई चीज़ लेके आता है या फिर उसके ऊपर आमद होती है अल्लाह की तरफ से और वो लफ्ज़ों को ढाल देता है, जो भी हालात और मामला चल रहे थे उसको एक्सप्रेस करता है?
1: मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना
0: सर।
1: एक भीड़ ने एक परवाने से कहा कि मैं परवाना बनना चाहती हूँ। तो परवाने ने कहा कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, परवाना बनना आसान नहीं है। भीड़ ने कहा कि मैं वो सारे मराहिल से गुजरूँगा जिन मराहिल से गुज़र कर मैं परवाना बन जाऊं। तो परवाने ने उसे कहा कि जाओ और आज शहर में जितने चराग रोशन हैं उनको गिन कर आओ। भीड़ गया, सारी रात घूमता रहा शहर में और सुबह आकर परवाने को बताया कि इस शहर में इतने हज़ार इतने चराग रोशन हैं। तो परवाने ने कहा कि तुम में परवाना बनने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है।
0: अरे वाह।
1: मैं जाता तो पहले चराग पर ही जान दे देता और अगर मुझे वापस आना होता तो मैं रोशनी के हमराह वापस आता।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शायर जो होता है वो आपके लिए, मुआशरों के लिए रोशनी लेने जाता है और रोशनी लेकर वापस आता है। वो दिखाता है कि अंधेरे में रहने वालों मंजर को ऐसे देखना है।
0: अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या कहने।

0: اور دل سے ہی فنون لطیفہ ہمیشہ دل سے نکلتا ہے. دوسرے ہنر آپ دماغ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن جو فنون لطیفہ ہے, چاہے مصوری ہے, چاہے گائیکی ہے, چاہے شاعری ہے, اس کا بنیادی تعلق دل سے ہوتا ہے.
1: اچھا شانی بھائی, یہ بتائیے کہ جو شاعر ہے وہ بورن شاعر ہوتا ہے, پیدائشی شاعر ہوتا ہے, کہ کچھ لوگ سیکھ کے بھی شاعری سیکھ سکتے ہیں؟
0: میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ پالش کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن سیکھ نہیں سکتے. یا آپ شاعر ہوتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے.
1: اچھا,
0: آپ اس کو دریافت کرنے میں آپ کو دیر لگ سکتی ہے, آپ کو دیر سے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ جو صلاحیت ہے وہ ودیت کی ہوئی ہے, لیکن بندہ ہوتا بائی بار نہیں ہے. پیدائشی طور پر اس میں خدا نے وہ چیز رکھی ہوتی ہے. تو میں اکثر اس کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں خدا کہتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا. بعضی الفاظ میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شاعر بنا کر کون بھیجتا ہے؟ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ شاعر بنا کر خدا بھیجتا ہے. تو شاعر بنا کر خدا ہی بھیجتا ہے, اور اس کو مزید بہتر اور اپنے انداز میں خوبصورت بنانے کے لیے علم موجود ہیں. آپ اساتذہ کو پڑھتے ہیں, آپ کہنے کا جیسے ثنائے بدائے ہیں, آپ اس میں بہت سارے وسیع علم ہے. شاعری پورا سمندر ہے, اس میں آپ جتنا غرق ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی موتی آپ کو ملتے ہیں.
1: اچھا سر, کسی میں اگر ٹیلنٹ ہے, اسکلز ہیں لکھنے کی, اور خاص طور پہ ہم شاعری کی بات کریں گے, شاعری وہ کر سکتا ہے, اور اوائل ادوار کے اندر یہ لگا کہ اس کے کچھ شعر جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو لگے, تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو استاد کا اپنانا ہوگا, اس کو کتابوں کو دوست بنانا ہوگا, کرنا کیا ہوگا؟
0: آج کا دور جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ خود سے بہتر تو کسی انسان کے پاس جانا ہی پڑتا ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: آپ کسی بھی معاملے میں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہوں, تو اپنے سے بہتر لوگوں سے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: تو شاعر کو بھی اسی طرح سے اپنے سے پہلے والے بزرگ شعرا کا نہ صرف کلام بلکہ اپنے عہد کے معتبر ناموں سے سیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا. شاعری بنیادی طور پر اصول جو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا نہیں کہنا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لکھنے والے جو ہیں وہ آپ سب کچھ نہیں کہہ سکتے. سب کچھ کہنا صحافی کا کام ہوتا ہے, شاعر کا کام نہیں ہوتا.
1: یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ صحافی کون ہے, شاعر کون ہے, ڈرامہ رائٹر کون ہے, اور اس کے ساتھ فلم رائٹر کون ہے.
0: ہاں, ہر چیز کی ایک حد فاصل ہے, اس کے درمیان رہ کر آپ نے دیکھنا ہے. شاعر الگ ہے, اس کا مرتبہ الگ ہے, اس کا جو ہے انداز سخن الگ ہے, انداز کلام الگ ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے کیا نہیں کہنے کا پہلے پتہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہنا کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں پتہ کرنا ہے.
1: قلب عباس بھی یہاں پہ آ چکے ہیں, لگتا ہے ان کو وہ ہمارے کوئی شاعر یاد آ گئے ہیں نا. دوست اب آپ آ جائیں, آپ پلیز آ جائیں. اچھا شانی بھائی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر حضرات جو ہمارے دوست احباب جو ہیں, ینگ نوجوان جو ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, ان کو بھی لکھنے کا ایک شوق ہے, شغف ہے. موجودہ حالات کے اندر چونکہ یہ جو دور جا رہا ہے یہ بڑا فاسٹ دور ہے, اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب شاعری بھی آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے مل جاتی ہے. لیکن آل دو کہ وہ والی لذت نہیں ملے گی, وہ والا آپ کو ربط نہیں ملے گا, وہ چیز نہیں ملے, لیکن مل جاتی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے نئے آنے والے جو بچے ہیں, آپ ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنی شاعری کا آغاز کیسے کریں, کس کو پڑھیں, کون سے شعرا اکرام جائیں پڑھنا بہت ضروری ہے, جن سے آپ کو شاعری کے جو بنیادی جو اصول ہیں ان کا پتہ چل سکتا ہے؟
0: میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہماری سوشل میڈیائی عہد جس میں ہم زندہ ہیں
1: سر,
0: اس میں بہت زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہوں تو آپ شارٹ کٹس استعمال نہ کریں
1: سر.
0: آج کا جو معاشرہ ہم ادھر ارد گرد دیکھ رہے ہیں, یہ شارٹ کٹس کا ہی دور چل رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں, راتوں رات ہم سٹار بن جائیں, اور راتوں رات ہی ہم کچھ ایسا کریں کہ صبح ہمیں پوری دنیا جاننے لگ جائے. ایسا ہو بھی رہا ہے, ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ محنت نہ کرنے والے, اتنے زیادہ ٹیلنٹ نہ ہونے والے لوگ بھی بہت زیادہ کما بھی رہے ہوتے ہیں اور معروف بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرف جانا, آپ اگر پھل جڑی بننا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کو آپ آسمان پر چمکیں گے اور دوسرے لمحے معدوم ہو جائیں گے. اگر آپ نے چاند بننا ہے اور روز چمکنا ہے تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے اساتذہ کو دیکھنا ہے, اور ایک پراپر چینل, ایک راستے پر چلنا ہے. उसकी गर्द को सहना है, उसकी मसाफत को सहना है, उसके हश्व ज़वायद को देखना है, तब जाके कहीं कोई मिसरा तार आपके हाथ लगता
1: अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अच्छा सर, आप का चूँकि आपका ओढ़ना बिछोड़ना जो है ना वो शायरी है, वैसे आप बचपन से ही ये शगफ था कि फैमिली में किसी से विरासत
0: मिली शायरी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली का पहला ही शायर हूँ, और अच्छा। शायद पता नहीं इसके बाद कोई हो, लेकिन अभी तक तो मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी नहीं था दूर दूर तक, जहाँ तक मैं मालूम इल्म के मुताबिक मैं अपने खानदान का पहला फर्द हूँ जो शायरी की तरफ आया।
1: सारा शजरा जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आप ही शायर हैं।
0: जितना मालूम है।
1: अच्छा ठीक।
0: तो उसमें मैं ही हूँ। तो ये है कि बचपन में ही जो किताब से जो ताल्लुक बना, निसाबी किताब से हटकर, निसाबी किताब शायर के लिए बहुत डरावनी चीज होती है, उसके अलावा जो किताब से ताल्लुक बना उसमें बहुत अर्ली एज में, पांचवीं क्लास में मैंने नावल पढ़ना शुरू कर दिए।
1: अच्छा।
0: अफसाना पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद शायरी की, एक तो स्कूल का माहौल ऐसा मिला कि बचपन में पांचवीं क्लास में ही हमें इकबाल याद करवाया गया, इकबाल की नज़में याद कराई गईं, तातो लफ्ज़ में इकबाल पढ़ना सिखाया गया। उस वक्त का जो स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, टांटों पर बैठ के पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन वो जो उसातिज़ा थे वो लफ्ज़ की हुरमत से वाकिफ़ थे, वो समझाते थे कि लफ्ज़ अदा कैसे करना है, और उस हवाले से बहुत ज़्यादा तरबियत हुई कि लफ्ज़ की अदायगी कैसे करनी है, और तकरीरी मुकाबले, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो स्कूलों में होती थी आज मुझे कहीं नज़र नहीं आती। और उसी की वजह यह है कि आज का नौजवान जो है वो रातों रात सारा कुछ हासिल करना चाहता है, उस मेहनत की तरफ, उस लगन की तरफ, उस शौक़ की तरफ नहीं बढ़ना चाहता जो अंदर जागती है, तो फिर आपको कहीं चैन नहीं लेने देती।
1: ये कितनी अच्छी आपने बात की कि पहले दौर के अंदर, यानी ज़्यादा पुराना दौर भी नहीं कहेंगे, हाँ, हाँ। जिसके अंदर तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, शेर व शायरी का शगफ लोगों में किया, इकबाल को बाकायदा तौर पे स्कूल में एक निसाब का हिस्सा होता था और वो पढ़ाया जाता था, फिर आपका बाकायदा निसाब के अंदर सब चीज़ें शामिल होती थी, और ये चीज़ें आप लोगों में या हमारी जनरेशन के अंदर आज भी हैं।
0: हाँ जी।
1: कि हम लोगों में ये शायरी का शगफ, शोरा इकराम के पास बैठने का शगफ। अच्छा सर, मुझे बताएं शायरी या राइटिंग या लिखने वाला या आर्टिस्ट, उसकी ज़िंदगी कितनी मुनज़्ज़म होती है और उसकी ज़िंदगी में अदब कितना होता है?
0: देखें, इसके हवाले से ना, हमें जो शोरा की ज़िंदगी है उसमें अमीक नज़री से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर को मामलात इतने अच्छे दिखाई नहीं देंगे।
1: ठीक है।
0: वहाँ आप देखेंगे कि जॉन एलिया जैसा शायर भी आपको दिखाई देगा जो ज़िंदगी से नाराज़ है, और ज़िंदगी से नाराज़ी में बहुत सारी ऐसी हरकत व सकनात उनसे सरज़द हो रही हैं जो बज़ाहिर आम आदमी के लिए बहुत अजीब व गरीब हों। वहीं आप देखेंगे कि अहमद नदीम कासमी जैसे सुलझे हुए, और मैं समझता हूँ, मैंने पहली दफ़ा जब अहमद नदीम कासमी साहब को देखा था तो दिल से आवाज़ निकली थी कि अच्छा, शायर ऐसे भी होते हैं। वरना एक जो हमने बचपन से सुन रखा था कि ये ऐसा शख्स जो वीरानों में घूमता है और शेर ढूंढता है और उजड़ा पुजड़ा सा शख्स होगा, जो इंतहाई नाकाम शख्स होता है, ऐसा नहीं होता। शायर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल का भी, अहमद नदीम कासमी जैसा भी होता है,
1: फैज अहमद फैज
0: जैसे भी होते हैं, और सबसे बढ़कर मुनीर साहब जैसे होते हैं। मुनीर नियाज़ी साहब, जिनको देखने से आंखें नहीं रचती थीं, बंदा देख देख थकता नहीं था उनको, इतने खूबसूरत इंसान और इतने खूबसूरत शायर। तो मैं इसको मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म में ऐसे ही कह सकता हूँ कि जैसे मुआशरे के दीगर जो हैं शोबे हैं उनमें जैसे हर किस्म के लोग मिलते हैं, यहाँ भी हर किस्मी मिजाज के और हर किस्मी इंसान मौजूद हैं, लेकिन होना उसको मुनज़्ज़म चाहिए, क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता दिखाना है, बताना है, बात ऐसी करनी है जिस पर वो कम अज़ कम खुद चलता हुआ दिखाई दे, या उसको देखकर ऐसा लगे कि आपने जो बात की है वो ऐसे ही दीवाने की बर्ड नहीं है, वो मुमकिन है, की जा सकती है। अगर इकबाल कहता है कि सितारों पे कमान डालने वाले नौजवानों से मुझे इश्क है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी हमारे सामने है। उसने एक सियालकोट के छोटे से इलाके से निकलकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करके दिखाई है। उनकी अपनी ज़िंदगी ऐसी है कि उन्होंने बन कर दिखाया है। तो ऐसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल होना चाहिए जी। और आपको, आप चूँकि मुआशरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मुआशरे की तर्जमानी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़िम्मेदारी जो है ना वो ज़्यादा होती है। अच्छा शानी भाई, क्या अच्छा शायर बनने के लिए मोहब्बत में नाकामी ज़रूरी है?
0: मैं समझता हूँ कि इस कायनात में जितने भी लोग ज़मीन पर भेजे जाते हैं, इश्क तो वो सारे करते हैं,
1: ठीक,
0: और उसमें नाकामी की रेशो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो इश्क में नाकाम तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो शायर नहीं होते। शायरी मोहब्बत उसको महमेज़ करती है, मोहब्बत उसको जिला बख्शती है, उसको नए मजामीन से आशना करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको शेर कहने के लिए मोहब्बत में नाकामी ज़रूरी है, ये कतन नहीं है। मैंने आपको इतने सारे लोग गिनवाए जो बहुत ज़्यादा खुशहाल लोग थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी की, बल्कि इकबाल तो ज़ाहिर है एक नमूना है सारी दुनिया के लिए,
1: रोल मॉडल है,
0: रोल मॉडल है। तो ऐसा है,
1: अच्छा, हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, जो जो मौजूदा या गुजर गए हमारे शुरा कराम, उनकी ज़िंदगी, उनके अहवाल, उनकी सक्सेस और उनकी नाकामी, और आजकल के जो इस जिद्दत के दौर के अंदर शुरा कराम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। चूँकि आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके होने का फ़ायदा तो हम उठाएंगे, शायरी ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। तो मैं चाहूँगा हमारे सुनने वालों के लिए कुछ पेश किया जाए।
0: जी, मैं गज़ल सुना देता हूँ आपको
1: सर।
0: हिजर लाजिम है तो इकरार से क्या लेना है।
1: वाह।
0: हिजर लाजिम है तो इकरार से क्या लेना है, मुस्तकिल ख्वाब के आज़ार से क्या लेना है।
1: वाह वाह वाह।
0: उम्र भर जिसको किनारा नहीं मिलने वाला,
1: उम्र भर
0: जिसको किनारा नहीं मिलने वाला, उसने इस पार या उस पार से क्या लेना है।
1: वाह वाह वाह।
0: और मैं तमाशा हूँ, तमाशाई नहीं हूँ साहिब।
1: मैं तमाशा हूँ, तमाशाई नहीं साहिब। वाह।
0: मैं तमाशा हूँ, तमाशाई नहीं हूँ साहिब, मुजतही दस्त ने बाजार से क्या लेना है।
1: वाह वाह वाह।
0: और रोटियाँ इसमें लपेटूंगा कि ताज़ा पहुँचें,
1: रोटियां इसमें लपेटूंगा कि ताज़ा पहुँचें,
0: रोटियां इसमें लपेटूंगा कि ताज़ा पहुँचें, और मज़दूर ने अखबार से क्या लेना है।
1: हाय हाय हाय। वाह वाह वाह वाह वाह। बहुत अच्छा।
0: और आपकी नज़र है ये शेर, और आप पर सजता भी है कि ऐसी मुंह जोर जवानी पे गुनाह सजता है। ऐसी मुंह जोर जवानी पे गुनाह सजता है, तूने बेदागी ये किरदार से क्या लेना है।
1: वाह वाह वाह। आपको पता है इस शेर के ऊपर शीशे के उस पार भी लोगों ने ना मुस्कुरा के देखा। कल साहब आपकी नज़र भी
0: है। ऐसी मुंह दौर जवानी पे गुनाह सजता है, तूने बेदागी ये किरदार से क्या लेना है। और उनकी नज़र भी किए देते हैं कि तेरी मुस्कान से जब शहर उलट सकते हैं,
1: तेरी मुस्कान से जब शहर उलट सकते हैं,
0: तूने फिर खंजर और तलवार से क्या लेना है।
1: वाह वाह वाह वाह। बहुत अच्छा।
0: मैंने सीखी ही नहीं मिद्दत शाह खालिद, मुझ कलमकार ने दरबार से क्या लेना
1: है। वाह वाह वाह। सर वैसे आपको ना पाबंद सलासल किया जा सकता है इस शेर के ऊपर।
0: मेरा ख्याल है कि इतनी गुंजाइश है कि शायर को उसकी बात कहने का हक हासिल है पाकिस्तान में, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं ऐसी कोई ऐसी इस शेर में ऐसी बात नहीं है कि पाबंद सलासल किया जा सके। आप तो इदराए तफन्नुन कहेंगे, हमारे इदारे मजाक समझने वाले ना भी हुए तो मेरा तो कबाड़ा निकल जाएगा।
1: अच्छा अच्छा सर, चूँकि हम देखते हैं कि हमारे कुछ शोरा इकराम जो है ना, उनके पास, उनके हाँ में किताबों के अंबार नज़र आते हैं, शायरी के किताबों के अंबार नज़र आते हैं, एक दो तीन चानी सौ किताबों में किताब। क्या शायर के लिए इतनी ज़्यादा किताबें होना उसकी अच्छे शायर होने की निशानी है?
0: असल में अभी तो रुझान कम हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे बरसग़ीर में किताब छापने की शायर को बहुत जल्दी होती है।
1: ठीक है।
0: यानी किताब जाहिर है, जैसे हमारे यहाँ किसी जवान की शादी होती है तो दो माह बाद ही पूरा ख़ानदान पूछ पूछ कर दुल्हन का जीना अजीरन कर देता है कि
1: क्या बना,
0: कोई खुशखबरी है या नहीं है। ऐसे ही जिसने चार छः गज़लें लिखनी होती थी तो फिर उसका ख्याल होता था कि अब फौरन से पहले किताब की सूरत में किसी बच्चे की भी रूनुमाई होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायरों के पास ज़्यादातर ऐसे ही कुतब का ज़खीरा होता है, जो तोहफ़तन शायर अहबाब जो ऐसे ही छपवाते रहते हैं, वो एक दूसरे को देते रहते हैं, और कुछ ज़ाहिर है उसने पढ़नी होती हैं हर सूरत में, अपनी शायरी को, अपनी गज़ल को, अपने अफसानों को, अपने लिखत को बेहतर बनाने के लिए उसे बहुत सारा ऐसा मवाद चाहिए होता है जो दूसरों से ऐसी तरह किताब से ही हासिल होता है। आपका मुताला उसको जितना वसी होगा, आपका विज़न उतना वसी होगा, और आपका जो कैनवस है, देखने का कैनवस है, मंजर देखने का जो जाविया निगाह है वो उतना ही खूबसूरत होता जाता है। तो इसलिए भी उसको पास बहुत सारी किताबें होती हैं।
1: बिल्कुल ठीक है, बड़ा आपने खूबसूरत जवाब दिया है और बड़ी खूबसूरती से भी आपने जवाब दिया है। अच्छा, आपने भी किताबें, आपकी भी माशाल्लाह आई हैं।
0: जी, 3 किताबें आ चुकी हैं और चौथी इस साल इंशाल्लाह आ जाए।
1: इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी ना मेरी ख्वाहिश है अभी नहीं, कुछ देर के बाद आपसे जो मेरी फेवरेट, आपकी ऑल टाइम फेवरेट, मैं परसों एक किसी प्रोग्राम में था तो वहाँ पर कुछ शेर व शायरी का माहौल बन गया, तो मैं जब भी ये वाला आपकी पढ़ता हूँ ना कलाम, तो मैं ऐसी दाद ले जाता हूँ कलाम आपका लेकिन मैं बताता ज़रूर हूँ, आपका नाम लाजमी लेता हूँ कि हमारे बड़े प्यारे भाई दोस्त हैं शानी भाई का ये कलाम है, तो दाद मैं ले जाता हूँ।
0: इस कलाम की कोई अपनी खुशबख्ती ऐसी है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर ट्विटर और फेसबुक, हर जो सोशल मीडिया का मीडियम है उस पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में आज भी शेयर होती है। ये ज़ाहिर है 2015-16 में मैंने ये गज़ल कही थी और उसके बाद से आज तक इस गज़ल को ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसी तरह मतलब रोज़ बरोज़ मुझे मेरे, बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे एक शायर हैं वहीद अहमद नज़म के, बहुत बड़ा नाम इस्लामाबाद से, वहीद अहमद साहब के बारे में कहते थे, उनकी एक नज़म है, बहुत मारूफ नज़म है, हम शायर होते हैं तो उसके बारे में सारे शायर दोस्त उनको कहते हैं कि ये वहीद साहब का कौमी तराना है,
1: कौमी तराना है।
0: तो ये वाली जो गज़ल है इस हवाले से मेरे भी वैसी ही है जैसी वहीद साहब के लिए वो वाली नज़म है।
1: अच्छा, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, कोई एक ऐसी चीज़ आपकी अल्लाह आपसे लिखवा देता है कि वो ज़बान ज़दे आम हो जाती है, हर बंदा उसको जब पढ़े जिस महफिल में।
0: इस हवाले से मैं बहुत ही खुश नसीब शख्स हूँ, हालांकि मैं शायरी की, मेरा दावा यही है कि शायरी की शीन से भी आगाह शख्स नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर खुदा मेहरबान बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से मेरे अशार, मेरी गज़लें बहुत ज़्यादा लोगों ने, पता नहीं उनके मिजाज के मुताबिक थी या क्या, मुझ पर करम था खुदा का,
1: अरे वाह,
0: कि वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मैं बहुत बहुत अमीर शख्स हूँ।
1: अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, शायर के लिए आजिज़ी बड़ी ज़रूरी है।
0: हाँ,
1: और उसका आजिज़ होना बड़ा ज़रूरी है।
0: मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का निसाब कि मैं शामिल होना चाहिए कि एजिज़ जो है वही आपको मोतबर करता है। एजिज़ अगर नहीं है तो उसके बिना, क्योंकि जितनी भी फ़ख्र हैं, जितने भी गरूर हैं, वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।
1: बेशक,
0: बंदे की कोई गुनाह किसी भी हवाले से सरकशी खुदा को इतनी नापसंद नहीं होती जितना गरूर नापसंद।
1: तकब्बुर नहीं तो इंसान
0: वो अपने इस हवाले से, गरूर के हवाले से अल्लाह इतना सेंसिटिव है कि वो किसी को करने ही नहीं देता। अगर आप गरूर के दायरे में दाखिल हो गए तो आप फना के दायरे में दाखिल।
1: क्या बात है। एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा शानी भाई से वो जो उनका मारूफ कलाम है उसको सुनेंगे। क़िबला शाह साहब, आपकी नज़र इंशाल्लाह ये हम कलाम भी सुनाएंगे। अभी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम लौट के आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मेहमान हमारे में, हमारे साथ आज के हमारे मौजूद मेहमान खालिद नदीम शानी साहब हैं, मारूफ शायर हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद लौट के आएंगे।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
4: शुक्रिया, आपने FM 101
3: किया। 13 जून, PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सिर्फ इसी को सारा कुछ समझ कर ना चलें, क्योंकि अगर आप उन मौजूदे मंजर पर रहने वाले शोरा में अगर शामिल ना हो सके तो फिर आपको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोगों का सोशल मीडिया भी चलता है जो मारूफ होते हैं, जिनको लोग कबूल करते हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं। अगर आप पहचान बनाने में आपने आपसे ताखीर हो गई या अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप शायरी से कुछ नहीं कमा पाएंगे।
1: अच्छा, पहचान बनाने में ताखीर या पीछे रहना एक तो चीज़ है कि आप इसको आप कैसे कहते हैं, बयान करते हैं, इंसान के मुकद्दर भी तो होते हैं ना कुछ।
0: ये सारा कुछ ही मुकद्दर है कि ये जो कबूलियत का सिलसिला है ये रब करीम की तरफ से ही है कि आपको आपके लफ्ज़ों में वो तासीर भर दे कि लोग उसको कबूल कर लें, उसको कंधे पर उठा लें। ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। आप जितना ज़ोर मर्जी लगा लें, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आप उस पर ख़र्च करें, आप उसको जैसे सोशल मीडिया पर है कि आप उसको वायरल करने के लिए जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जिसे इज़्ज़त हो, शोहरत हो या उसकी कबूलियत हो, वो अल्लाह की तरफ से ही है और ये उसी दर से ही मिलती है।
1: अच्छा, आपने फरमाया था कि शायरी जो है ना ये कता है, ये आप शायर शायरी होता है, वो पैदाइशी शायर होता है, लेकिन शायर शायरी को निखारने के लिए, शायरी को बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या बुनियादी जो चीज़ें जो होनी चाहिए एक शायर के लिए, या जो शायरी के मैदान में आना चाहता है, जिसको लगता है कि वो शायरी कर सकता है?
0: मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे पहली बुनियादी चीज़ यह है कि अपने क्लासिकल विरसा जो है, जो हमारा शायरी का विरसा है, अदब का विरसा है, उस पर पूरी निगाह होनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए उसने, और बुनियादी चीज़ कि उसने क्या नहीं कहना, आज के दौर में क्या नहीं कहना, और जो कहना है वो किस अंदाज से कहना है, वो लोगों तक बात पहुंचानी कैसे है, ये बुनियादी चीज़ है। मुताला और क्या नहीं कहना, ये अगर आपको आता है तो आप सीधे रास्ते पर हैं और आप अल्लाह आपको ज़रूर किसी न किसी मकाम से हमकिनार करेगा। और उसके अलावा तहम्मुल, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाज का जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल्दबाजी शैतान का काम होता है, बड़े तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता अपने थ्रू प्रॉपर चैनल से अपने रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ें, लोगों पर कीचड़ उछाल कर, किसी के कंधे पर उछल कर, किसी को गलत रवैयों से किसी को पीछे धकेल कर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप तमाशा बनेंगे या तमाशाई, कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपना काम पर तवज्जो दें, अपने शेर पर तवज्जो दें, अपने मुताले पे तवज्जो दें और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। ये जो आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं जिन्होंने ये काम किया और इज़्ज़त शोहरत नाम बनाया, तो उसकी कदर करना, उनसे सीखना, उनके पास बैठना बहुत बड़ी सआदत होती है। वो इस नज़रिए से बैठें कि जहाँ से मैं कोई लफ्ज़ उठा कर ले कर जाऊँगा, आज कुछ नया सीख कर जाऊँगा, यही चीज़ आपको आगे लेकर जाती है।
1: अच्छा शानी भाई, हर फील्ड के अंदर अजारादारी भी है, ब्लैक पूलिंग भी है, और फिर हर फील्ड के अंदर ये भी कहा जाता है कि जी जेलसी भी होती है। इस आपकी जो फील्ड है ख़ासतौर पर शायरी, इनमें शोराए कराम में भी कहा जाता है जेलसी भी होती है, ब्लैक पूलिंग भी होती है, एक दूसरे की टांग भी खींची, तो मुशायरों के हवाले से बहुत ज़्यादा जंग चल रही होती है। जो शायर होता है, जो लिखने वाला, वो तो बड़ा हसास होता है, बड़ी मोहब्बत वाला होता है, फिर ये चीज़ उसके अंदर कैसे आ जाती है?
0: देखिए, एक हद तक ये कारफरमा होती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अच्छा लिखारी होता है ना, वो ये एक्सक्यूज़ नहीं पेश कर सकता कि मुझे कुछ लोगों ने रोका और मेरा रास्ता बंद हो गया। जो अच्छाई का रास्ता, आज तक खैर और शर साथ साथ चलते हैं, अच्छाई का रास्ता कभी नहीं रोका जा सकता। अगर आपके शायरी में दम है तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपके हुनर में, आपकी लिखत में इतनी ताकत है कि आप आगे बढ़ें तो ज़रूर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो किसी ख़ास प्लेटफार्म पर काबिज़ होते हैं, और लोगों को उसमें उनको लगता है कि अगर कोई और आ गया तो मेरी मांग कम हो जाएगी। ये सब कुछ देखने को मिलता है, सारे लोगों के लिए होता है, ये किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होता कि कोई परेशान हो, ये इज्तमाही तौर पर सब के लिए ये मसाइल होते हैं। उन्हीं में से रास्ता बनाना होता है, अपने खूबसूरत रवैयों के साथ आपने आगे आना होता है और अपने आप का मनवाना होता है। तो ये सब के मसाइल हैं, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है।
1: मुशायरे आज भी होते हैं?
0: बहुत होते हैं, अब ज़्यादा होते हैं मुशायरे।
1: ठीक है, और उसके अंदर भी कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है शायरों के?
0: हाँ, शायर अब बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं मुशायरा का।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो इजाजिया के उसमें, इजाजिया की मद में वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं शोरा आजकल,
1: जो जो फेमस हैं खासतौर पे आजकल, तो शोरा फेमस है इस तरह जो फेसबुक पे या टिकटॉक पे फेमस है। हाँ, उसको कहते हैं कि ये फेमस है,
0: जिनकी मांग है,
1: जिनकी मांग है।
0: हाँ, तो वो जितने मांगते हैं उसमें वो मनवा लेते हैं मुंतजमीन।
1: अच्छा,
0: को। हाँ।
1: अच्छा, आपको कभी लगा कि कुछ लोग बड़े फेमस हैं टिकटॉक पे फेसबुक के ऊपर, लेकिन शायरी का जो मेयार है वो ऐसा नहीं है कि वो फेमस होने वाला है?
0: वो मैं एक जुमले में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आप करना क्या चाहते हैं, अगर आप फुलझड़ी बनना चाहते हैं, और फुलझड़ी क्या होती है कि आपने यहाँ से उड़ाई आसमान पे जाके चमकी और फिर मादूम हो गई, ये जो वक्ती तौर पर ऐसे चमकना होता है, आप अगर यही चाहते हैं तो आप कुछ भी करके, कुछ हरकतें करके वायरल होना क्या है। एक शख्स कपड़े उतार कर अपनी रील बना के फेंक दे, वो शाम तक वायरल हो जाएगा, लेकिन एक शख्स कॉन्टैक्ट के लिए, लिखत के लिए मेहनत करता है, कहाँ कहाँ से लफ्ज़ चुन के लाता है, उसकी बैकग्राउंड में उसका मुताला खड़ा है, उसके बैकग्राउंड में उसके 25-30 साल खड़े हैं, तो वो मेहनत करके वो जो लफ्ज़ बोलता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा उसमें, उससे उसका फ़ायदा होता है और वो लोग सुन रहे हैं, उसको और उसका मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। यानी आलिम और जाहिल का, इल्म और जहालत का मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। जहालत भी मारूफ होती है, ये नहीं है कि सिर्फ मारूफ हो, साथ साथ जहालत भी मारूफ हो जाती है। तो आप जहालत के दम पर मारूफ होना चाहते हैं या इल्म के बल पे आप मारूफ होना चाहते हैं?
1: बहुत अच्छी बात,
0: ये रास्ता आपने अपनाना
1: है। बहुत खूबसूरत बात है, और ये एहसास अगर आपके अंदर आ जाए तो फिर आप बड़े
0: ठहरा हुआ
1: मोहतात भी हो जाते हैं,
0: मोहतात होते हैं आपके, आप वक्ती चकाचौंध से मुतासर हुए बगैर।
1: बड़ा मुश्किल है वैसे
0: आज के दौर में, मुश्किल है,
1: मुश्किल है जब आप कंपैरिजन करते हैं, इर्द गिर्द देख रहे होते हैं।
0: देखें, मैं पिछले दिनों एक टीवी शो में मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे साथ जो थी खातून टिकटॉकर थी, वो उनको बतौर मेहमान बुलाया गया था वहाँ, और उनके 16 मिलियन फॉलोअर्स से 16 मिलियन फॉलोअर्स जाहिर है, तो फिर और उनके पास जाहिर है वो स्किल, क्या स्किल है एक,
1: बिल्कुल
0: अगर वो जो गानों पे अगर आप टिकटॉक बना रहे हैं तो उसको स्किल नहीं कहा जा सकता। तो एक साथ उसके साथ जो मेहमान बैठा है उसने 30 साल रियाजत की है शायरी में, ये तो फिर आप, ये हमारा माशरती तौर पर ये सब कुछ साथ साथ चलेगा, लेकिन आपने फैसला करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं, आप लाइन के किस तरफ खड़े होकर अपने आप को मनवाना चाहते हैं, उस तरफ या इस तरफ।
1: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शानी भाई, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे जो शोरा इकराम मशहूर हैं, तो वैसे एवरेज कितना वो कमा लेते हैं, कितना वो एक मुशायरे का डिमांड कर देते हैं?
0: देखें, मुल्क से बाहर भी चूँकि जाना होता है तो वहाँ भी होता है, पाकिस्तान में भी 2-2.5 लाख ईजीली वो शोरा चार्ज कर लेते हैं।
1: अच्छा, मुल्क के अंदर भी?
0: हाँ,
1: एक मुशायरे का?
0: एक मुशायरे का।
1: ठीक है, और वो मुशायरे का ये मैटर नहीं करता साइज़ क्या है, छोटा है या बड़ा है?
0: वो मुंतजमीन पे डिपेंड करता है कि वो अगर बुलाना चाहते हैं ऐसे शोरा को तो फिर उन्होंने वो पे करना है।
1: ठीक है, और ये जो मुंतजमीन होते हैं जो मुशायरे के, ये शौकीन लोग होते हैं कि वो भी कुछ चार्ज करते
0: आप
1: हैं?
0: आप यूँ समझ लें कि ये पैशन होता है लोगों का, अदब परवरी हर कहीं ना कहीं वो बहुत सारे ऐसी तंजीमें होती हैं जो उससे, उस इंतज़ाम से कुछ और भी मज़ीद कमाना चाह रही होती हैं। ये सिर्फ ये नहीं
1: है कि शायर होते हैं,
0: हाँ जाहिर है स्पॉन्सर ले रहे हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जो क्योंकि ये जो आवाम को एक जगह पे इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं होता। शोरा को सुनने के लिए अगर खचा खच हाल भरे हुए नज़र आते हैं तो ये शोरा की जाहिर है काबिलियत और उनका क्रेडिट तो है,
1: बिल्कुल है इसमें कोई
0: तो शक। उस पर अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा होता है, शोरा के गम में पतला नहीं हो रहा होता वो उसे कुछ दीगर अपने अहदाफ भी हासिल कर रहा होता है।
1: बिल्कुल ठीक, और लाजिम है जी, उसके बगैर तो, उसके बगैर तो कोई भी, ये तो दुनिया तो अब है ही मफादात की ना,
0: बिलाशुबा।
1: तो अगर वो आप लोगों के फन से, आप लोगों के कलाम से लोगों को मुस्तफीद कर रहा है तो वो अपना भी कुछ उसमें,
0: हाँ, उसको दाल दलिया उसका भी उसी से वाबस्ता
1: है, हिस्सा बकदरे जो हासिल कर रहा होता है। अच्छा ये ये क्या होता है कि कौन लोग डिसाइड करते हैं कि किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, कौन लोग?
0: देखें, मैं हमेशा से ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा नाम मुशायरों से कटवाया गया या फलां लोग कटवाते हैं, मैं हमेशा इस बात की मुखालफत करता हूँ।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मुशायरे बहुत ज़्यादा होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको कटवाया जा सकता है। या मैं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जो बंदा इस मुशायरे पे खर्च कर रहा है, इतना बड़ा मुंतजम है, वो इंतज़ाम कर रहा है, तो उसको इतना हक़ तो बनता है कि वो जिसको चाहे बुलाए, इतना हक़ तो उसे देना चाहिए। और वो उसने जिन शुरा को वो समझता है कि मेरे लिए ये ज़रूरी हैं, तो उसका पूरा हक़ है वो जिसको चाहे बुलाए। वो चाहे दो चार लोग बार बार बुलाए जा रहे हैं या आठ दस बार बार बुलाए जा रहे हैं, इसमें ना उन शुरा का कसूर है ना वो शायर जो नहीं बुलाया जा रहा उसके साथ ज्यादती है, बल्कि वो उनकी ज़ाती पसंद है कि जिनको भी बुला रहा है।
1: वैसे कभी कभी आपको दुख या तकलीफ़ होती है जब आप मुशायरे में हो और कुछ शोरा इकराम इस तरह के देखें?
0: इसका एक सवाल के जवाब का एक हिस्सा था, दूसरा हिस्सा था कि कुछ मुशायरे होते हैं हुकूमती सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में जो मुशायरे होते हैं उनमें अगर आप मेरिट का ख्याल नहीं रखते, वो जो हकदार हैं उनको नहीं बुला रहे, जो फेमस भी हैं, शेर भी अच्छा कह रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों को नवाजा जा रहा है उनमें जो शेर व अदब के हवाले से उनका ना मकाम है ना नाम है, लेकिन वो किसी और हवाले से सिफारशी चिट के ज़रिए अगर वो शामिल हैं तो फिर वो ऐसे शोरा के साथ ज्यादती वाकई शुमार की जाती है कि जिनका हक बनता था उनको नज़रअंदाज किया गया और चंद ऐसे शोरा को बुला लिया गया जो इस काबिल नहीं थे। इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हुकूमती सरपरस्ती में अगर कहीं मुशायरा हो रहा है तो उसको मेरिट पर इंतहाई दयानतदारी से उन अफराद का बुलाना चाहिए जिनका हक बनता है, सिलसिलावार जो हाँ जो सीनियर्स हैं, जो उस शहर के जिस शहर में मुशायरा हो रहा है उस शहर के मुतलक शोरा को, या अगर मरकज़ में ही बार बार सरकारी मुशायरे हो रहे हैं तो मज़ाफ़ात के अच्छे शोरा को भी मौका देना
1: चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए ना।
0: बेशक।
1: अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी तो होता ना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉबी बनी हुई है और उस वो लॉबी ही सर्कल कर रही है पूरे मुशायरों के अंदर, उन्हीं लॉबी का होल्ड है।
0: देखें, कोई भी ऐसा नहीं है शोभा जिसमें दोस्त नवाजी ना हो।
1: ठीक है,
0: दोस्तों
1: अच्छा
0: का दोस्तों के
1: दोस्त नवाजी,
0: हाँ ये दोस्त नवाजी ही है। कुछ लोग अगर ग्रुप की सूरत में आप दूसरा सख्त लफ्ज़ बोलेंगे तो माफिया बोल देंगे आप, कि एक माफिया है जो किसी को आगे नहीं आने देता, या दोस्त हैं जो एक दोस्तों का इकट्ठ है और वो चाहते हैं कि हमने एक मिलजुल कर एक साथ ही रहना है और एक प्रोग्राम में इकट्ठे जाना है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक दोस्त नवाजी है वो लोगों का हक है, जहाँ तक मोनोपोली है और माफियाज़म है उसकी मेरा ख्याल है कि आपको मज़म्मत करनी चाहिए। मैं भी मज़म्मत करता हूँ अगर कहीं माफियाज़म है और इस हवाले से लोग लोगों के ख़िलाफ़ या शायरों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो काबिल मज़म्मत ही हैं हर प्लेटफॉर्म से।
1: बिल्कुल, मज़म्मत भी होनी चाहिए और इस पे बाकायदा तौर पे सीरियसली इसको लेना चाहिए,
0: रोकथाम भी होनी चाहिए इसकी।
1: बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक जो शायर है जब वो जब किसी चीज़ को तख्लीक कर रहा होता है, बना रहा होता है, बाज़ जो होता है ख्याल आपका किसी एक पॉइंट पर रुक जाता है या आपकी गज़ल मुकम्मल नहीं होती, तो गज़ल को मुकम्मल करने के लिए फिर क्या करते हैं आप? कोई ऐसी चीज़ आपने लिखी?
0: ऐसा है, ऐसा अक्सर होता है कि बाज़ औक़ात एक शेर आपके हाथ आया है और गज़ल कभी नहीं हुई, वो एक शेर ही आपके पास रहा है। मेरा अपना एक बड़ा मारूफ शेर है कि सारी खुशियाँ मिला के देखी हैं,
1: वाह
0: सारी खुशियाँ मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम ज़्यादा है।
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह।
0: तवील अरसा तक ये शेर सिर्फ एक शेर की सूरत में ही मेरे पास रहा।
1: हमारे साथ असद हैं, वो भी मुस्कुराए हैं आज। अभी अभी आपकी सारी गुफ्तगू में ये शेर उनको अच्छा लगा है, एक दफ़ा फिर प्लीज मुकर।
0: सारी खुशियाँ मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम ज़्यादा है।
1: हाय हाय हाय, तेरे जाने का।
0: तो ऐसा होता है कि ये मैंने जब ये शेर कहा था, मेरे ख्याल में 2007 में ये शेर कहा था और इसकी गज़ल जो है वो 2024 में मुकम्मल हुई है।
1: अच्छा,
0: तो ये भी ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि उसको बहुत वक्त लग जाता है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता या आप किसी और दूसरी तरफ इतनी शिद्दत से मुतवज्जा हो जाते हैं कि फिर वो चीज़ रह जाती है और फिर अचानक से उसी मोड में आप जाते हैं और फिर आप उसको मुकम्मल कर लेते हैं।
1: शानी भी थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि आप शायर भी हैं, लिखते भी हैं, आपको कभी ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है?
0: हाँ, मैं इससे कभी इनकार नहीं करता।
1: अच्छा।
0: मोहब्बत ज़ाहिर है, मोहब्बत मोहब्बत शायरी की तरह ही इनाम है और ये इनाम मुझ पर हुआ है।
1: वाह वाह, तो ये इनाम मुस्तकिल हो गया आपके लिए?
0: नहीं, ये तो फिर बहुत तवील कहानी हो जाएगी। अच्छा। इसके लिए आपको अलग से प्रोग्राम
1: करना पड़ेगा। लेकिन वो मोहब्बत आपकी शायरी में कितना असरअंदाज करती है?
0: देखिए, मोहब्बत उसका शायरी जो है एक खेत है और उसका मोहब्बत जो है वो उसको सैराब रखती है और उसको उसी के बल बोते पर ये सारा निज़ाम चलता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: मोहब्बत का पानी ही शायरी को सरसब्ज रखता है।
1: वाह वाह, मोहब्बत में कामयाबी शायरी को बेहतर करती है कि नाकामी?
0: मैं नहीं समझता, आप मोहब्बत कोई नाकाम नहीं होती।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बिछड़ जाना अलग बात है, मोहब्बत नाकाम नहीं होती।
1: वाह,
0: ये एक गलत कंसेप्ट है कि आप बिछड़ गए हैं तो मोहब्बत नाकाम हुई है। मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती।
1: मोहब्बत आप कहते किसको वैसे?
0: मोहब्बत वही चाहत जिसको जिस चीज़ जिस भी आपने ऐसा सवाल किया है कि इस पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ कि मोहब्बत कहते किसको है।
1: जी जी जी।
0: तो मोहब्बत अब बता, हम इस वक्त बात कर रहे हैं इंसान की, इंसान से मोहब्बत।
1: जी जी जी।
0: उस हवाले से बात करेंगे तो ये मोहब्बत जो होती है, अगर आप बिछड़ गए हैं तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये नाकाम मोहब्बत है। मोहब्बत हर हाल में कामयाब होती है। मिलना या बिछड़ना नसीब की बात है। जब आपको मोहब्बत अता कर दी गई है तो ये एक कामयाब तरीन चीज़ है जो आपको अता कर दी गई है। ये उम्र भर आपके काम आएगी। ये उम्र भर आपको मुतशद्दद नहीं होने देगी। ये उम्र भर आपको जुल्म नहीं करने देगी। तो ये आप पर खुदा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है कि आप मोहब्बत वाले बन गए हैं। तो फिर उसके बाद क्या सोचना कि वो कोई आपके जिससे आपने मोहब्बत की वो आपके साथ है या नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत जो है ये मांगती नहीं है, ये हमेशा देती है। मोहब्बत देने का नाम होता है। आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो आप सब कुछ उसको दान कर देते हैं। आप उसको नहीं छीनना चाह रहे होते कि आप वो ही, ये खुदगर्जी होती है। खुदगर्जी और मोहब्बत में एक हद फासिल है कि जब आपको मोहब्बत हो गई है फिर आपका सारा कुछ महबूब के लिए होता है। फिर महबूब जहाँ भी है वो खुश रहे, उसके लिए दुआएं होती हैं, उसके लिए हमेशा से वैसी ही मोहब्बत होती है जो पहले दिन होती है।
1: अच्छा,
0: इसको कभी इख्तिताम नहीं होता, इसका कोई फुल स्टॉप नहीं होता।
1: नहीं, अगर आपको मोहब्बत नहीं मिलती तो आप कह रहे हैं फिर भी वैसी मोहब्बत रहती है?
0: मोहब्बत जारी रहती है। मोहब्बत ऐसा चश्मा है जो कभी खुश्क नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह, मोहब्बत ऐसा दरिया है जहाँ पानी कम नहीं होता। अगर बारिश अगर रूठ भी जाए तो
0: पानी कम नहीं होता।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर, ये मोहब्बत का जो फलसफा है इसमें प्योरिटी कितनी ज़रूरी है? और आज के जो मोहब्बत देखते हैं आजकल, आप,
0: मैं इसको इसी हवाले से कहूँगा कि जो आजकल के हवाले से जब आप बात करेंगे ना तो आप इसे मोहब्बत नहीं कहेंगे। ये मोहब्बत से नाशना लोग हैं जो ये रवैये अख्तियार करते हैं। जो मोहब्बत के दायरे में आएगा वो उसी तरह मोहब्बत करेगा जैसे पहले इंसान ने मोहब्बत की थी। ये मुख्तलिफ़ नहीं होती, मोहब्बत एक ही जैसी है जो आज से हज़ारों साल पहले इंसान ने इंसान के साथ की थी, आज भी वैसे ही करेगा। बस आप उसके दायरे में आएंगे तो वैसे ही कर पाएंगे ना। आपको इल्म होना चाहिए मोहब्बत कहते किसको हैं, मोहब्बत का मकाम क्या है, मोहब्बत कैसे दान की जाती है, मोहब्बत के लिए कुर्बानियाँ कैसे दी जाती हैं, मोहब्बत की खुशियाँ क्या हैं, मोहब्बत का गम क्या है। ये जाने बगैर अगर आप सिर्फ किसी इंसान की कुर्बत को मोहब्बत समझे बैठे हैं तो ये आपका कसूर है।
1: अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अच्छा शानी भाई, क्या इंसान अपने दुखों से बनता है या खुशियों से?
0: मैं समझता हूँ कि इंसान को तामीर उसके दुख ही करते हैं। ज़फ़र ख़ान न्याजी, आपके रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा नाम थे ज़फ़र ख़ान न्याजी की, एक किताब थी चौकोर पहिए, छोटे छोटे अफसानचे लिखे थे उन्होंने। तो उसमें एक ये भी था, हमारे मियाँ वाली से थे, मेरे बड़े महबूब राइटर थे वो, बहुत बहुत मोहब्बत थी उनके साथ। उन्होंने लिखा था कि एक दिन का जो हर दुख के बाद सुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है, लेकिन एक दिन की ईद 30 रोज़ों के बाद आती है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये तनासब बड़ा अजीब है।
1: बहुत अच्छा,
0: दुख और सुख का तनासब बड़ा बिगड़ा हुआ है। ये कभी ऐसे नहीं होता कि आज का जो इतवार है ये दुख का है और जो सोमवार है वो खुशी का है, ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी पूरा साल दुख में गुजरता है और एक दिन खुशी का मिलता है, लेकिन वो जो एक दिन खुशी का होता है वो पूरे साल के दुख पर भारी होता है।
1: अरे वाह, अरे वाह। अच्छा ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग दुख में ही ज़िंदगी गुजारे होते हैं, दुख कोई ओढ़ना बिछोना बनाया होता है, क्या ये रवैया ठीक होता है कि आप हर वक्त दुख की कैफियत में रहें?
0: देखें, दुख अगर आप इनाम समझते हैं दुख को, तो फिर आप दुख को सेलिब्रेट करें जैसे त्यौहार मनाया जाता है। आप उसको मातम ना बना लें कि आप उससे मुतासर होकर इर्द गिर्द के लोग भी मुतासर होना शुरू हो जाएं, वो भी इसकी जद में आ जाएं। अगर आप हर वक्त गम की कैफियत में रहना चाहते हैं तो फिर आपको इतना कुशादा होना चाहिए कि आपके करीब तरीन रिश्तों और आपके करीब तरीन बैठे हुए शख्स को भी इल्म ना हो कि आप इस वक्त कितने दुखी हैं।
1: अरे वाह, अरे वाह, यानी कि आपके चेहरे के तासुरात से भी ना पता चले
0: अपने गम को। इतना ज़र्फ़ वाला इंसान हो कि उसके बाहर अंदर का मौसम और बाहर के मौसम को एक जैसा नहीं होना चाहिए।
1: बड़ा मुश्किल बता रहे हैं आप।
0: हाँ मुश्किल है, लेकिन जब जो करेगा वो सुकून भी पाएगा और वो इसके लज्जत से भी आशना होगा।
1: इंसान अपनी असल जो पहचान है उसको कैसे तलाश कर सकता है?
0: अपने आप में, अपने अंदर का सफ़र करना,
1: अपने मन में डूब के
0: पा जा सुरागे ज़िंदगी। ये बाहर का सफ़र है ही नहीं, आपने अंदर झांकना है, आपने सर झुकाना है और मुलाकात करनी है अपने आप से कि आज बहुत दिन हो गए हैं अपने आप से मुलाकात नहीं हुई, अपने रू बरू होना है।
1: हाय हाय वाह वाह वाह वाह, खुद कलाम करना है। हाँ। खुद से कलाम करना कितना ज़रूरी है ना।
0: बहुत ज़रूरी है, कभी कभी सब कुछ साइड पर रख कर अपने आप से मिलने के लिए निकल जाना चाहिए।
1: तन्हाई कितनी ज़रूरी है?
0: तन्हाई जितनी भी ज़रूरी है उसके लिए आपको तगोदाव नहीं करना पड़ती, वो आपको दबोच लेती है आकर।
1: हाय हाय, हमें ना काफ़ी देर से कॉल्स आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉल ले लें फिर उस।
0: जी ज़रूर ले,
1: माजरत चाहता हूँ जी, कॉल आ रही थी हमारी, तो हम चूँकि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला चाह रहे हैं और काफ़ी देर हो गई आप गुफ्तगू, आप से सवाल पे सवाल मैं करी जा रहा हूँ, कलाम मैं चाहूँगा एक शामिल किया जाए।
0: जी मैं ज़रूर सुना,
1: मेहरबानी।
0: मैं एक नज़्म सुनाना चाहूँगा
1: जी, प्लीज़।
0: तेरा मिलना भी कैसा मिलना है,
1: वाह,
0: तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, जैसे खुशबू में रंग घुल जाएं,
1: अरे वाह,
0: जैसे बारिश में सम्फनी सुनना, जैसे फूलों की आंख खुलते ही मौसमों से बहार मिलती है, जैसे रास्ते दियों से भर जाएं, चांद उतरा हो ओक में जैसे, जैसे धड़कन से गीत मिल जाएं, आंख मिलती है जैसे ख्वाबों से, ख्वाब आँखों को जैसे मिल जाएं, जैसे शबनम का लम्स पाते ही आबलों को सुकून मिलता है, तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, जैसे गिरती हुई इमारत के किसी कोने में टूट बिखरे हुए आईने के उदास टुकड़े को किसी अपने काक्स मिल जाए, जैसे ख्वाहिश के एक समंदर में कितनी सदियों से रुलती सीपी की आबे निसां से कोख भर जाए, जैसे सैरा के एक मुसाफिर को एक टीले की ओट से यकदम मंजिलों का निशान मिल जाए,
1: अरे वाह,
0: तेरा मिलना भी कैसा मिलना है,
1: वाह वाह,
0: तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, जैसे वारिस की हीर सुनते ही किसी रांझे को जोग मिल जाए,
1: जोग मिल जाए,
0: जैसे लैला से इश्क मिलता है, जैसे मजनू को रोग मिल जाए, जैसे लब पर दुआ मचलते ही कोई तारा फलक से टूटा हो,
1: वाह वाह,
0: जैसे जंगल के एक मुसाफिर को कोई कुटिया दिखाई दे जाए, जैसे ईसा को ऐन सूली से कोई जिंदा उठा के ले जाए।
1: वाह वाह वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा शानी भी, कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो मुशायरे के हवाले से, बड़ा कोई जिसे कहते हैं ना मजाक इज़ अनएक्सपेक्टेड, आप बेशुमार मुशायरों में जाते हैं।
0: हाँ, एक मुशायरा था गुजरात में, तो वहाँ पे मुशायरे के बाद का एक वाक्य है। तो एक साहब जो उस मुशायरे में शरीक थे, वो मुशायरा बहुत अच्छा हुआ था, मेरी सदारत में ही मुशायरा था। एक साहब मेरे पास आए और मेरे उसने ना अपना शायरी का जो ब्यास थी वो भी अपनी बगल में दाबी हुई थी और बड़ी नस्तालीक उर्दू में मेरे साथ गोया हुए कि हजूर आप कितने असनाफ़ सुखन में शेर कहते हैं। मैंने कहा हजूर यही गज़ल कह लेता हूँ या नज़्म कह लेता हूँ। उन्होंने कहा बस, बड़ी नखमत से उन्होंने कहा कि बस। तो मैंने कहा जी हजूर, तो कहते हैं कि नहीं आपको ना मैं कम अज़ कम 28 असनाफ़ सुखन में शेर कहता हूँ।
1: अच्छा,
0: देखे ना शानी साहब, बंदा जब शायर है तो फिर यूँ समझे कि वो करियाने का स्टोर है उसका। कोई भी गाहक आए तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए।
1: ठीक है,
0: तो मैंने उनसे कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप करियाना बनाए, मैंने आढ़त बना ली है चावल की। आप करियाना करें, मैं अपनी आढ़त करता हूँ,
1: मुझे मेरी आढ़त करने दें। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा।
0: हाँ।
1: लोगों के कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिस पे आप खुद हंस रहे होते हैं।
0: ऐसा ही है।
1: अच्छा शानी भाई, वक्त हमारे पास बिल्कुल अब मुख्तसर सा रह गया, मैं चाहूँगा कि कुछ और कलाम पेश किया जाए
0: जी, मैं
1: तो हमारे सुनने वाले के लिए और हमारे देखने वालों के लिए।
0: ज़रूर मैं सुना देता हूँ
1: जी, जी जरूर।
0: मैं गज़ल सुना देता हूँ आखिर में, जो अब्र घेर के लाया तो मैं अकेला था।
1: हाय हाय हाय वाह।
0: जो अब्र घेर के लाया तो मैं अकेला था, तुम्हारा हिजर मनाया तो मैं अकेला था। तुम्हारे लम्स की खुशबू फरेब निकली है, तुम्हारे लम्स की खुशबू फरेब निकली है, बदन ने हश्र उठाया
1: तो मैं अकेला
0: था। ये मेरी अपनी दुआएं जिन्होंने रद्द होकर, ये मेरी अपनी दुआएं जिन्होंने रद्द होकर गले से मुझको लगाया तो मैं अकेला था। दयारे ख्वाब था, तुम थे तमाम दुनिया थी, दयारे ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया थी, किसी ने आके जगाया तो मैं अकेला था। कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में, कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में, दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था।
1: अरे वाह अरे वाह।
0: कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में, दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था। तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी।
1: आए हाय हाय। तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी,
0: मेरी समझ में जब आया तो मैं अकेला था।
1: अरे वाह।
0: और कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में, कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में, मुझे खुदा ने बनाया तो मैं अकेला था।
1: अरे वाह अरे।
0: और दयारे गैर गया था मैं खुशियां लाने को, दयारे गैर गया था मैं खुशियां लाने को, पलट के गांव जब आया
1: तो मैं अकेला था। अरे
0: मैं अकेला था।
1: अरे वाह।
0: अभी तो दोस्त दियों की मिसाल थे खालिद, अभी तो दोस्त दियों की मिसाल थे खालिद, हवा ने शोर मचाया
1: हाय हाय हाय हाय तो मैं अकेला था।
0: तो मैं अकेला था।
1: हाय हाय हाय हाय। ये ताज़ा कलाम है
0: ये? सर नहीं, ताज़ा तो नहीं है, बहुत देर से लिखा है।
1: वाह
0: ये मेरे दिल के बहुत करीब
1: बहुत
0: है।
1: बहुत खूब सर, बड़ा मज़ा आया। और माशाल्लाह ये हमारी जो आज की नशस्त है, ये जो महफिल मैं इसको कहूँगा आपके साथ, यकीन जाने दिल कर रहे कि हम इसको मज़ीद ले कर चले, लेकिन वक्त हमें ये कह रहे हैं कि हमने आपसे और सुनने वालों से और देखने वालों से इजाज़त भी चाहनी है। सर कोई पैगाम?
0: मैं पैगाम बस यही है, मोहब्बत है पैगाम, अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत बनाएं अपने खूबसूरत रवैयों से। आप अपना हिस्सा छोड़ कर देखिए, खुदा आपको बहुत नवाजे।
1: हाय हाय।
0: आप देने वाले बने, आप पर नवाजशात की बारिश हो जाया करेगी। आप एक कदम पीछे हटिए, हट के देखिए तो सही, खुदा आपको बहुत बुलंदी अता करेगा।
1: वाह।
0: आप भागना बंद कीजिए, दौड़ना छोड़िए, रुक कर ज़रा इर्द गिर्द देखिए, कोई गिरा हुआ है तो उसको उठा लीजिए, उसको संभाल लीजिए, उसके बदले में खुदा आपको बहुत नवाजेगा।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब। आप इज़्ज़त दें आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप मोहब्बत दें आपको मोहब्बत मिलेगी,
0: बिलाशुबा
1: आप जो बांटेंगे वो अल्लाह ताला आपको
0: देगा, उससे हज़ार गुना ज़्यादा देगा,
1: उससे हज़ार गुना ज़्यादा बेशक। खालिद नदीम शानी साहब मारूफ शायर हमारे साथ हैं थे, और बहुत खूबसूरत आज की ये महफिल गुफ्तगू। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा, और मुझे ख़ास तौर पे आज आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करके यकीन जाने बहुत अच्छा लगा, यकीनन हमारे सुनने वालों को भी। मैं इंतहाई माजत खाऊँ, आप लोगों की कॉल्स लगातार आ रही थी, मैं उसको मौसूल नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास इतने सवालात थे, अभी भी बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गई, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको दोबारा दावत देंगे, आपने हमारे पास आना है
0: ज़रूर,
1: और इसमें दोबारा रौनक बख्शनी
0: है। आपके सब सुनने वालों को का शुक्रिया, उन्होंने बहुत मोहब्बत से सुना, और जिन लोगों ने कॉल्स की हैं इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द हम किसी प्रोग्राम में कॉल्स भी लेंगे और आपसे गुफ्तगू भी होगी।
1: ज़रूर सर, थैंक यू सो मच जी। मैं भी चाहूँगा इजाज़त इसी अपने पन के साथ कि आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी जुम्मे रात 10 से 12 101 इंटरनेशनल पर। टिल देन अल्लाह निगहबान एंड लव टू ऑल।

0: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए
2: रात के 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम वज़ारतों को मौसर तरक्याती पॉलिसियां वज़ा करने और इन पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने आज टेलीफोन पर बातचीत में बदलती इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 8 अरब इस्लामी ममालिक के ग्रुप ने मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी की मुसम्मत की है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और अब खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात में इजाफे और सनअती मसनूआत की मुकामी सतह पर पैदावार के लिए मौसर पॉलिसी इकदाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।
3: This is FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: ऐसे मनोवन ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: रात के 11 बजे है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम वज़ारतों को मौसर तरक्याती पॉलिसियां वज़ा करने और इन पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने आए टेलीफोन पर बातचीत में बदलती इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
1: This is FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मुट्ठी खोल। आगे मीच, फूंक मार और जो मांगना है मांग ले।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आवाज़ें चुप होती हैं, जज़्बात बोलते हैं।

0: सुनते रहिए हर रात 12 से 2 मंगल और जुमा ओनली ऑन FM 101।
1: आप सुन रहे हैं FM 101। सुनते रहिए FM 101 101।

100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनून से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। वेल जनाब, दिस इज आरजे ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं फ्रॉम 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम इज हरफे जुनून, आपका और मेरा साथ रहता है हमेशा, मंगल और जुमे की शब रात 12 से 2 बजे तक। दिल की बातें करते हैं, दिल की बातें करने आते हैं, दिल की बातें सुनने के लिए आते हैं। आज भी बहुत कुछ है कहने को, और सोच रहा हूँ कि उन तमाम सोचों को किस तरह से तरतीब दूँ। वो तमाम बातें जो दिल में हैं वो आपसे कहना चाह रहा हूँ, किस बात को पहले रखूँ और फिर किस बात को बाद में रखूँ। और फिर अक्सर ये डर भी होता है कि जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको समझ ना आई तो, अगर उसने कुछ और गलत समझ लिया तो। कितना मुश्किल होता है कि कभी कभी जब आप कह कुछ रहे होते हैं लेकिन समझने वाला कुछ और मतलब के साथ कोई और बात कंसीव कर रहा होता है, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप जितना एक्सप्लेन करते हैं, जितनी वजाहत देते हैं, वजाहतें आपको मजीद मशकूक कर देती हैं। वो क्या शेर थे ना कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, खताकार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी भी ज्यादा सफाई ना दे। कभी कभी जो शख्स वजाहत दे रहा होता है, सफाई दे रहा होता है, लोग उसको और ज्यादा मशकूक और खतावार समझते हैं। क्या करें, कहें तो भी मरते हैं, ना कहें तो भी जान जाती है। कभी कभी दिल करता है कि हमारी बात जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे प्यारे हैं, वो ऐसे ही क्यों नहीं समझ लेते। हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, इतने बरसों की रफाकत है, इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक साथ हमने कितना कुछ देखा है, सहा है, वक्त गुजारा है, लेकिन अभी भी उस शख्स को मेरी समझ नहीं आई, अभी भी वो शख्स मुझे मेरी जात को नहीं समझा, अभी भी उसको एक एक बात खोल खोल के, कह कह के, वजाहतें दे दे के बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। कभी कभी कितना मुश्किल होता है किसी को समझाना, बताना, एतमाद में लेना। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ और मरहले पर ले आती है कि वो लोग जिनको हम पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, जिनको हम पे सबसे ज्यादा भरोसा और एतमाद होना चाहिए, वही लोग हमारे बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हालात की वजह से, और कभी कभी यूं भी होता है कि कोई तीसरा चौथा शख्स भी बीच में आया होता है। कहते हैं कि अगर झूठ बार बार बोला जाए, मुसलसल बोला जाए, लगातार बोला जाए, तो एक वक्त आता है कि वो तसलसल के साथ बोला गया मुसलसल झूठ भी एक वक्त में आके ज़रा नॉर्मल लगने लग जाता है, और फिर एक वक्त में वो थोड़ा सच लगने लग जाता है। कोई शख्स हमें हकीकतों को किस तरह से दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है, अगर वो बार बार बार बार बार बार आके अब
अपनी वो बात दोहराएगा, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दोहराएगा, तो हमारा जहन कहीं ना कहीं उसको सच मानने लगता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपने कोई सन ग्लासेस लगाए हों, कोई काले रंग का चश्मा लगाया हो, कोई लाल रंग का, कोई जर्द रंग का या कोई हरे रंग का चश्मा लगाया हो, तो जो ही आप चश्मा लगाते हैं तो आपको हर चीज उस शीशे के रंग की दिखाई लगने लग जाती है। अगर आपने लाल चश्मा लगाया है तो आपको हर चीज़ लाल लाल दिखाई देगी। अगर हरा चश्मा लगाया है तो आपको हर चीज़ हरी हरी दिखाई देगी। अगर काला चश्मा लगाया है तो हर चीज़ आपको डार्क दिखाई देगी, डल दिखाई देगी, रोशनी कम और मध्यम दिखाई देगी, शेड्स जो हैं वो फ़र्क हो जाते हैं, रंगों की हयत बदल जाती है, तनासुब बदल जाता है। और क्या हो कि अगर वो चश्मा जो सुर्ख रंग का चश्मा है वो आप एक दिन लगा के रखें, दो दिन लगा के रखें, एक हफ्ता लगा के रखें, एक महीना लगा के रखें, एक साल लगा के रखें, तो फिर पता क्या होगा? आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे हर चीज़ सुर्ख रंग की नज़र आ रही है। एक वक्त के बाद आप ये मानना शुरू कर देंगे कि ये हर चीज़ सुर्ख ही है। फिर आपने वो सुर्ख रंग का अगर चश्मा लगाया है, या चाहे हरे रंग का, चाहे जर्द या फिर काला, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बल्कि आप मानना शुरू कर देंगे, आप बिलीव करना शुरू कर देंगे कि अब तो ये ऐसा ही है। जबकि कोई और आके आपको समझाएगा कि नहीं, तुम्हारी आंखों पे लाल रंग का चश्मा है, इस वजह से तुम्हें लाल लाल नजर आ रहा है, तो आप उसे लड़ पड़ेंगे। आप उसको कहेंगे कि तुम्हें मेरी आंखों पर शक हो रहा है, अब तुम्हें मेरे देखने पे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे एंगल पे एतराज है। नहीं, जो मैं हकीकत देख रहा हूं वही हकीकत है, वही ठीक है। हालांकि वो हकीकत तो आप देख रहे हैं, लेकिन वो एक सुर्ख रंग के अदसे से फिल्टर होके आई हुई हकीकत है। कभी कभी चीजें वैसी थोड़ी होती हैं जैसी वो होती हैं, वो बदल चुकी होती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या अजीब जमाना आ चुका है ना कि हमें अपना आप एज इट इज कबूल नहीं होता, हमें अपना आप जैसे हम हैं, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम सारे जमाने को दिखते हैं, जैसे हम खुद को आईने में दिखते हैं, हमें अपना आप ही नहीं अच्छा लगता। हम तस्वीरें खींचते हैं, फिर उसके ऊपर कितने फिल्टर्स लगाते हैं ताकि हम खुद को भी और फिर दूसरों को भी अच्छे, खूबसूरत, ठीक ठीक से दिखाई दें। हमें तो अपना आप भी एज इट इज कबूल नहीं होता, खुद को भी फिल्टर से गुजार के, निकाल के फिर ही अच्छे लगते हैं, फिर ही वो तस्वीर स्टेटस लगाने के काबिल होती है, पोस्ट करने के काबिल होती है, स्टोरी लगाने के काबिल होती है। दुनिया की मशहूर तरीन ऐप है स्नैपचैट, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत है ही यही कि वो आपको मजीद खूबसूरत, मजीद अच्छा, मजीद वैसा करके दिखाती है जैसे आप बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जब तस्वीर खींचनी होती है और अपनी आंखों के इर्द गिर्द जो हल्के हैं उनको छुपाना होता है, तो मुझे भी अक्सर इन फिल्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। हाय, कितना मुश्किल है हकीकतों को तस्लीम करना, हकीकतों को एक्सेप्ट करना, कबूल करना। दुनिया तो दुनिया, यहां पे तो खुद को कबूल करना एक अजाब है।
और पता है क्या, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम खुद को कबूल करना है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग ही अपने आप के साथ जंग होती है। औरों के साथ कहाँ जंग होती है, लोगों के साथ कहाँ जंग होती है, अपने आप के साथ जंग होती है। अपने आप से लड़ रहे होते हैं हम हर वक्त, मैं ये मैं वो, मुझे ऐसा लगता है या मुझे वैसे लगता है, मेरी पसंद मेरी नापसंद, मेरी बात मेरा ख्याल, मेरी सोच मेरा सच, हम सब इसी चीज से लड़ रहे होते हैं। बहरहाल आप हैं यहाँ पे मेरे साथ, आप सुन रहे हैं, अच्छा लगता है कि आप सुन रहे हैं। बड़ा खूबसूरत एहसास होता है कि कोई आपको सुनता है और कोई आपको तवज्जो से सुनता है। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम किसी को सुनना है, तवज्जो से सुनना है, इस एहसास के साथ सुनना कि हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी फजूल सी बेमतलब बातों को भी अहमियत दे के सुन रहा हूं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये खासियत होती है। कल मैं एक मुआलिज के पास गया। उस मुआलिज से मिलने के बाद मेरी उस मुआलिज के साथ तकरीबन 2.5 घंटे की सिटिंग रही और मैं जब उठा वहां से तो मैं बड़ा तिश्ना उठा, बड़ा प्यासा सा उठा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने मुआलिज को कुछ बताऊं, मैं भी कुछ बताऊं कि मैं क्या महसूस करता हूं, मेरी क्या कैफियत है, मेरी क्या हालत है। लेकिन वो मुआलिज एक ऐसा मुआलिज था कि उनका सुनने से ज्यादा सुनाने पर जोर था। कभी कभी बड़ा जरूरी होता है, मैं ये समझता हूं, जब आप बड़े होते हैं ना, किसी मुकाम पे होते हैं, किसी जगह पे होते हैं, और आपसे कद में इल्म में मर्तबे में कोई छोटा शख्स आपसे आके मिलता है और वो कोई बात करता है, तो अक्सर ऐसे होता है कि वो जो बड़ा आदमी होता है ना, वो 2-3 बातों के बाद ही समझ जाता है कि अगला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि बड़े होने का तकाजा ये है कि छोटे की भी थोड़ी सी सुन लेनी चाहिए, कम से कम इतनी जरूर सुन लेनी चाहिए कि उसको तसल्ली हो कि मेरी सुनी गई। उसके बाद बेशक फैसला आप सुनाएं, उसके बाद बेशक बात आप अपनी ही रखें, बेशक आप उसकी तमाम बातों को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी प्यार से, बड़े तरीके से रद्द कर दें, मुकम्मल रद्द कर दें, लेकिन एक दफा सुन तो लें। लेकिन हमारे यहां कुछ बड़े ऐसे भी बड़े होते हैं जिनकी महफिल में बैठ के आपको एहसास होता है और वो जानबूझ के इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप किस कदर छोटे हैं। वो उस्तादे ग्रामी कहा करते होते थे कि बड़ा आदमी वो होता है जिसकी महफिल में बैठ के कोई शख्स खुद को छोटा महसूस ना करे। और देखिएगा, गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जा बजा हर तरफ जगह जगह ऐसे कितने लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो सो कॉल्ड बड़े तो जरूर होते हैं, लेकिन वो बड़े इस तरह से होते हैं कि वो दूसरे को छोटा महसूस करवा के
खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कोई बड़ा ऐसे थोड़ी बनता है कि जब आप किसी दूसरे को छोटा महसूस करवाएं। हाय, बहरहाल कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितना बोलता हूँ, फिर मुझे ख्याल आता है कि इस बोलने के ही तो पैसे मिलते हैं मुझे। तो चलें, मैं भी बोलता हूँ कुछ, आपको बोलने का मौका भी देता हूँ। आइएगा, बात कीजिएगा, गुफ्तगू कीजिएगा, हमारी तमाम लाइंस ओपन हैं। अगर आप कॉल करना चाहें 04211100101 पे आपकी कॉल्स लूँगा, लेकिन अभी नहीं लूँगा, तकरीबन कोई 12:45 के बाद मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला लूँगा। अगर आप हमें मैसेज करना चाहें तो 4471 पे मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल से टाइप कीजिएगा 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज, भेजिएगा 4471 पे, 4471 पे आप मैसेज करेंगे। इसके अलावा फेसबुक पे आइए, सबसे सस्ता, आसान और टिकाऊ तरीका, फेसबुक पे आइए और सर्च कीजिए FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। वहाँ पे आके आप मेरी इस प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। FM 101 लाहौर के पेज पे आना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं लाहौर से आप सबसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आपको मैं अपने प्रोग्राम हरफे जुनू में खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, बातचीत के सिलसिले तो यकीनन चलते रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, लेकिन ये कुछ गाने हैं, इनको भी शामिल करना है, करना पड़ता है, क्या करें।

खान साहब की एक कवाली है, उसका ये रीमिक्स वर्जन है। न जाने क्यों मैं जब जब भी इसको सुनता हूँ, इसके वर्सेस, इसके लिरिक्स को सुनता हूँ, तो अक्सर कहीं पे पहुँच जाता हूँ। कुछ चेहरे आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं, कुछ यादें न जाने कहाँ से उमड़ के आ जाती। दिल एक अजीब सी कैफियत में पहुंच जाता है। आज कोई बात हो गई। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, मिलते हैं स्ट्राइक के बाद। साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, मिलते हैं स्ट्राइक के बाद।

वेल जी, मैं अभी एक गाने की तरफ बढ़ूंगा, एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आके आपसे मजीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से बढ़ाएंगे। बहुत अरसे बाद एक गाना प्ले कर रहा हूँ, क्या खूबसूरत गाना है, क्या जबरदस्त मेलोडी है। इस ट्रैक को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इस ट्रैक के उस पार मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं।

0: गुलजना वेलकम बैक। 12:51 हो चुके हैं। अच्छा क्या है ना कि कभी कभी यूं भी होता है कि जिंदगी में ना कुछ ऐसे लम्हे आते हैं, कुछ ऐसे हमारे लिए वो ऐसे कमज़ोर लम्हे होते हैं जब हम बड़े टूटे होते हैं, हम बड़े बिखरे होते हैं और कहीं ना कहीं हम कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहे होते हैं जो कि जिसे हम अपने दिल की बात कह सकें, जिसको हम बता सकें कि हम क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में कभी कभी हम किसी ऐसे गलत शख्स का इंतखाब कर लेते हैं और उस कमज़ोर लम्हे में, उस नाजुक लम्हे में, उस टूटे हुए लम्हे में जब हम उसे अपनी और अपने ज़ात की सच्चाइयाँ बताते हैं तो क्या होता ना कि कुछ अरसे के बाद वो लोग हमारी उन बातों को जो हमने उनसे कही होती हैं, जो उनसे शेयर की होती हैं, उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं दूसरे लोगों के सामने। बड़ा मुश्किल होता है एतबार करना। एतबार एक ऐसी चीज़ है, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर कोई सबसे नायाब चीज़ है तो वो एतबार ही है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, नहीं समझ आती कि किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ना किया जाए। यकीन जानिए ज़िंदगी में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, उनसे देख उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ वक्त गुजारा है और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे चेहरे जिनकी सच्चाइयों की कसम मैं खा सकता था और खाता था दूसरे लोगों के सामने कि यार कुछ भी हो लेकिन ये शख्स जो है वो कभी धोखा नहीं दे सकता, ये शख्स कभी कुछ गलत नहीं कह सकता, ना मेरे बारे में ना किसी और के बारे में। और फिर ज़िंदगी आपके साथ कुछ ऐसा खेल खेलती है कि एक वक्त आता है और आपको मालूम होता है कि आपके पैर काटने वाला और कोई शख्स नहीं था बल्कि वही था। आपको एहसास होता है कि आपने जिस पर जितना ज़्यादा एतबार किया, जितना ज़्यादा जिस पर भरोसा किया, आखिरकार सबसे ज़्यादा हमें लूटने वाला, धोखा देने वाला, हमारे एतबार को ठेस पहुंचाने वाला वही शख्स था जिस पर हमें सबसे ज़्यादा एतबार था। कहते हैं कि किस शख्स से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर के रहना चाहिए, तो किसी सियाने ने कहा कि सबसे ज़्यादा डर के रहना चाहिए अपने बेहतरीन दोस्त से, जो आपके बारे में वो सब कुछ जानता है या शायद कभी कभी वो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानता है। वो जो बेहतरीन दोस्त होता है, जो सबसे करीबी दोस्त होता है, अगर कभी वो दुश्मन बन जाए, अगर वो कभी ज़िंदगी के किसी मुकाम पर पलट जाए, तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक और कोई भी शख्स नहीं हो सकता। वो ऐसी ऐसी जगह से वार करता है ना, वो ऐसे ऐसे वार करता है कि आप उठने के काबिल नहीं रहते, आपको संभलने में फिर बड़ी दुश्वारी होती है, बड़ी देर लगती है। आप बताइएगा कि क्या आपके साथ कोई इस किस्म का कोई तजुर्बा हुआ कि किसी ऐसे शख्स के हाथों डसे गए हों जिस पे आपने सबसे ज़्यादा एतबार किया था, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसके मुतल्लिक आपकी राय ये हो कि यार ये शख्स कभी धोखा नहीं दे सकता। याहिया अजीम जाफरी सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। जुगनू जूनियर कहते हैं कि सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया, सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ये में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा। जुगनू थैंक यू, आपने मैसेज किया है लेकिन ये शायद कुछ मेरे पास मिसिंग आ रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं गया, मैं इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगा। बहरहाल अली हसन ऑफिशियल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा और जो जो जहाँ जहाँ से आप लोग सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। कॉल्स लेते हैं, हमारे साथ कुछ कॉलर मौजूद हैं। 04221100101 पे आपकी कॉल्स ली जा रही हैं। सो अगर आप कॉल करना चाहें तो अब से हम कॉल्स को ओपन कर रहे हैं, देखते हैं हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अपना नाम दोबारा बताइएगा।
1: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना फ्रॉम जर्मनी। हमना कैसी हैं आप? ठीक है चलें, ये तो और भी अच्छी बात है। हमना क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूँगी,
0: आप मुझे बताएं कि आप जर्मनी से सुन रही हैं कि लाहौर में हैं, वैसे जर्मनी होती हैं आप?
1: जर्मनी से सुन रही हूँ मैं।
0: अच्छा, जर्मनी से सुन रही हैं, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया।
1: पाकिस्तान से आ चुकी हूँ।
0: ओके ओके ओके, तो हमना क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इत्तबार करना एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है,
0: लेकिन इत्तबार तो हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है।
1: हो जाती है, मेरे साथ खुद हुआ है, मैं खुद इत्तबार करके बात इतना पछताती हूँ यार, ना करती इत्तबार, ये पता नहीं
0: खुद ब खुद हो जाता है। फिर हल क्या निकाला इसका? अच्छा, आपकी आवाज ना बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा आप अगर हैंड फ्री लगाई है तो उसको उतार दें।
1: हैंड फ्री लगाई, मेरे उतार दिए जैसे ही मेरी कॉल लगी।
0: ओके ओके,
1: टाइम का नहीं पता चलता, यानी कि जर्मनी में ना अब यहाँ पे 9 बज रहे हैं जर्मनी में, ठीक है,
0: सुबह के 9 है कि रात के 9 है?
1: रात के 9 है, यानी कि रात के 9 बज रहे हैं यहाँ।
0: ओके,
1: पाकिस्तान का क्या वक्त है? 1 बजा होगा, मुझे तो
0: यहाँ पे रात के 1 बज रहे हैं।
1: तो यहाँ पे टाइमिंग का नहीं मुझे पता चलता, तो मेरी फ्रेंड है पाकिस्तान में, वो मुझे बताती है कि ये भैया फलाने आज आ गए, तुम ट्यून कर लो।
0: अच्छा ठीक है।
1: और यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, फर्स्ट टाइम नीट पे बात हुई आपसे मेरी ना।
0: जी जी, तब हमारा कंबाइन शो चल रहा था,
1: ये तो तब मेरी बात हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ना एक पैगाम मैसेज देना चाहूंगी भाई के आपकी हेल्प हो तो।
0: जी जी बताएं।
1: ये ना कल ना अब्दुल हाशिम भाई आए हुए थे, कल प्रोग्राम था, आए किसने आए और कहते हैं आप, जैसे कि मेरा नाम कह रहे थे कि आप झूठ बोलती है, आप जितनी की नहीं है। और कहते हैं झूठ बोलने की क्या जरूरत,
0: आप जर्मनी की नहीं है।
1: हाँ यही कह रहे थे, तो ना जब भाई देखे, मैंने कहा ये रेडियो है, ठीक है, हमें यहाँ पे झूठ बोलने की क्या ही जरूरत है, ठीक है, हमें यहाँ इतना कुछ सीखने को मिलता है, जिस एरिया में हम रहते हैं हमने वो बताना होता है, हमने अपना नाम बताना होता है, ठीक है। और मेरे को पता नहीं क्या फील हुआ, तो वो मुझे कह रहे थे कि भैया आप झूठ बोल रही है, आप जरूरी ही नहीं है।
0: चले।
1: तो मुझे मैंने कहा था मैं ना जहाँ भाई के प्रोग्राम में बात करूंगी, क्योंकि उनका मैसेज आया, तो भाई
0: अच्छा सर, हमें तब भी बड़ी तकलीफ होती है, हमें तब भी हम कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट होते हैं कि कुछ लोग ना हमें कभी कभी जज करते हैं, और हम सोचते हैं कि यार ये शख्स मुझे जज क्यों कर रहा है, मतलब हम इसके लिए हूँ या ना हूँ, हमारा होना या ना होना इनके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, और हमारे लिए उन लोगों का होना या ना होना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लेकिन फिर भी कुछ लोग अचानक से कहीं से आते हैं और आके वो हमारे मुतल्लिक कोई ना कोई जजमेंट देते हैं, हमारे बारे में कोई बड़ी मोहर लगी हुई तस्दीक के साथ कोई ना कोई ऐसी जजमेंट दे देते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये बात ये क्यों कर रहा है, इसको क्या करने की जरूरत है, और अगर ये ना भी करे तो मैं ये कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जो इस चीज़ को फेस करते हैं, अगर आपको लगता है ना कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसके होने और ना होने से, जिसके कोई बात कहने या ना कहने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यकीन जानिए, अपने आप को भी ये समझाइए कि अगर कोई कुछ भी कहता है तो वाकई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी हम उन लोगों की उन बातों को लेकर इतनी टेंशन्स ले रहे होते हैं जो बातें सोचने के काबिल भी नहीं होती हैं और जिनको सोचना ही नहीं चाहिए। मोहम्मद शुएब सिद्दीक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ माय फादर्स आईडी, माय नेम इज़ शिमजा फातिमा फ्रॉम लाहौर। सर नाइस शो, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर वॉइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शिमजा, बड़ा यूनिक सा नाम है शिमजा, क्या मतलब होता है शिमजा इसका, ये भी आपने बताना है। और अली हसन हमारे साथ हैं, कहते हैं कि मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ। आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने का तरीका है आप डायल करेंगे 042-111-000-001। और अगर आपको नंबर या मैसेज करने की अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप हमारे फेसबुक के फ़ैन पेज पे आइए FM 101 लाहौर, और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की पोस्ट होती है, उस पोस्ट के ऊपर सारी डिटेल्स रिटर्न में लिखी होती हैं, तो आप वहाँ से रिटर्न में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको देख के, नोट करके, स्क्रीनशॉट लेके आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें। लेकिन मसला पता क्या है, अब हम लोगों के पास सवाल नहीं होते, अब हम सबके पास जवाब होते हैं। हम सब जवाब देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फटाफट से हम ये भी जवाब दे दें, वो भी जवाब दे दें, सबको जवाब दे दें, बस किसी तरीके से अपनी बात कर दें। सवाल तो आज किसी के पास है ही नहीं, कोई अच्छा सवाल, कोई बड़ा सवाल, कोई मयारी सवाल, कोई ऐसा सवाल कि जिसको करने से हमारी खुद की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए, हमारी सोच को एक नया रुख मिले, हमें कोई नया एंगल, कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू मिले, हम किसी नए रास्ते पे चलना शुरू करें। लेकिन हमारे पास जवाब ही जवाब हैं, सवाल ही नहीं है। और देखिएगा, गौर कीजिएगा कि हमारे इर्द गिर्द जवाबों की भरमार हो चुकी है। ज़रा सी कोई बात हो तो जवाबात अचानक से उमड़ उमड़ के आने लग जाते हैं। AI आ चुका है आपके WhatsApp में, AI आ चुका है आपके कंप्यूटर्स में, AI आ चुका है आपके स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन्स हैं, आप ज़रा सी बात उससे पूछते हैं वो खोल खोल के एक्सप्लेन कर करके बता देता है, हर बात बता देता है, जो आपके जहन में भी नहीं होती उस बात को भी बता देता है। सवाल कम हैं और जवाब ज्यादा हैं। एक कॉल और लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम ज़ियाद जी साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, समनाबाद लाहौर से।
0: वालेकुम सलाम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं,
2: अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
0: अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ जी, वो ये मैंने कहा कि जिस बंदे ने अपनी आदतें नहीं सही करनी ना, आप उसको समझाएंगे तो वो आपको आपकी सोने जैसी बातों को गलत कहना शुरू कर देगा, वो सिर पीड़ी होती है मेरी। जिसने अपनी आदतें नहीं सही करनी, आप उसको कुरान और हदीस की बातें नहीं सुनाएंगे ना, वो उसको असर नहीं होना।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
2: दूसरा ये कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में किसी पर एतबार नहीं किया ना, हमने अपने बड़ों के साथ धोखे होते देखे हैं, तो हम जब से पैदा हुए हमने तो फिर हमने किसी का काम गलत किया नहीं, कोई मजूर है, पास है या नहीं पास है, उसका काम 100% सही किया, लेकिन खुद किसी पर एतबार नहीं किया, बड़ा मुख्तात हो गया अल्लाह की मदद से, अल्लाह ने मदद की है, तो इस तरह चले हम, क्योंकि इतवार का जमाना नहीं है, इतवार जो करेगा वो मार खा देगा।
0: लेकिन बगैर किसी पर एतबार किए हुए, बगैर किसी पे ट्रस्ट किए हुए जिंदगी में आगे बढ़ना, आगे चलना भी तो बड़ा मुश्किल है। आपको कदम कदम पे एतबार तो करना पड़ता है, चाहे वो, और एतबार किस पे करना होता है? आपके करीबी लोग ही होते हैं, आपके अपने होते हैं, कभी वो खून के रिश्ते होते हैं, कभी वो आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, वो लोग जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपको एतबार तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे तो करना ही पड़ता है।
2: इस तरह है कि आप प्लस पॉइंट से एतबार करें। अब मैंने एक दो प्रॉपर्टी के काम किए, मैं वो जो जिन लोगों के साथ मिलके किए, मैंने डॉक्यूमेंटेशन सारी अपने पास रख ली और मैंने उनके पास साथ एक चार आने का भी दगा नहीं किया। लेकिन वो सेफ साइड लेके आप चले, एतबार करें, लेकिन सेफ साइड अपनी लेके साथ, अपनी सेफ साइड चारों तरफ जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके हर पहलू को देखें, सेफ साइड लेके चलें और ये नियत करें कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं करना और इतबार बिल्कुल नहीं करना। अब इतबार जो करेगा फिर वो रगड़े ही खाएगा, हमने तो देखा। हमने
0: क्या बात है, क्या बात है बट साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात।
2: सेफ साइड लेके चलें, आप जो कारोबार करते हैं या जो भी दुनिया में काम करते हैं उसको हर एंगल से देखें, जिसको आप किसी बच्ची बच्चे का रिश्ता ही करने जा रहे हैं। मैं तो एक बच्चों को समझाता हूँ कि यार आप एक कॉपी या पेंसिल खरीदने जाते हैं, 20 रुपए की पेंसिल खरीदते हैं, वो आप पहले उसे चला के देखते हैं, और जब किसी बच्ची को पसंद करते हैं 12 साल जाया करते हैं, उसका देखें उसका बाप के रहन सहन कैसा है, उसके भाई का रहन सहन कैसा है, उसका खुद का रहन सहन कैसा है, फिर आप इतनी बड़ी फैसला करेंगे मैं उसके साथ जिंदगी गुजारनी। पेंसिल खरीदते वक्त इतना देखते हैं और जब इश्क होता है किसी से फिर वो उसे पड़ताल ही नहीं करते हैं।
0: सर इश्क तो फिर आपने लगता है कभी इश्क किया नहीं है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं। इश्क में तो फिर कहाँ देखा जाता है कि इश्क तो फिर इश्क होता है, वो तो अंधाधुंध होता है
2: वो ज्यादा, फिर बट जो भी लोग करते हैं ना, मैंने भी शायद किया हो, वो वक्त जाया होता है।
0: अच्छा चलिए बट साहब बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल लंबी हो गई है।
2: बाकी ये है कि आप ना वो बार वाली बात नहीं है किसी तरह की। अब
0: ठीक है बट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
2: बड़ी बड़ी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा एतबार की आज हम बात कर रहे हैं, एतबार गो के बड़ा मुश्किल है कि आप बग़ैर एतबार के ज़िंदगी जी लें, क्योंकि आप कोई रोबोट तो है नहीं, आप कोई ऐसी मखलूक तो है नहीं कि जिसके अंदर इमोशंस ना हों, जिसके अंदर जज्बात ना हों। इंसान को जहाँ पे रब ने अकल दी है वहीं पे साथ साथ भरपूर जज्बात भी दिए, और इंसान की सारी ज़िंदगी जो जंग लगी रहती है वो अकल और उन जज्बात के दरमियान में ही कहीं ना कहीं लगी रहती है, वो जिसको हम कहते हैं कि हमारा दिल कुछ और कहता है और हमारा दिमाग कुछ और कहता है, मंतक और लॉजिक कुछ और कहती है लेकिन दिल कहता है कि नहीं इसी रास्ते पे चलना है, ऐसे ही करना है। कभी कभी यूं भी होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो बज़ाहिर अगर हम उनको मंतक की बुनियाद पर परखें देखें, अगर हम उनको लॉजिक के ऊपर रख के देखें तो शायद हम उनके साथ, हमें तो उनके साथ एक कदम भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं, हम अपने जज्बात के हाथों मजबूर होते हैं और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, एक मौका और देकर देखते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा सा और आजमा के देख लेते हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम इसको बदल देंगे, हो सकता है वक्त के साथ ये बदल जाए। इसी कश्मकश में हमारी ज़िंदगियाँ गुजरती हैं, इसी कश्मकश में हमारी दोस्तियाँ होती हैं, इसी कश्मकश में हमारी मोहब्बतें होती हैं, इसी कश्मकश में हम बाज़ुकात रिश्तेदारियाँ निभा रहे होते हैं और तोड़ रहे होते हैं, इसी कश्मकश में हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अहम फैसले कर रहे होते हैं। लेकिन बहर हाल किसी ना किसी जगह पे आके, कहीं ना कहीं आके एतबार भी करना पड़ता है, क्या करें इसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी की आईडी से शिमजा हमें मैसेज कर रही थी और शिमजा कहती हैं कि सर शिमजा नाम के मीनिंग इज़ स्वीट वॉइस एंड टॉलरेंस, और शिमजा कहती हैं कि प्लीज़ टेल मी मोहब्बत क्या हो थी, मुझे आपके इस मैसेज की समझ नहीं आई। और मिस्टर ए एच ने हमें ज्वाइन किया है, सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, यकीनन आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जैम इनाए हमारे साथ हैं और इनका क्या कहना है, इनके मैसेजेस को भी ज़रा शामिल कर लेते हैं। इनका कहना है कि ढल गई उम्र सभी शौक हमारे लेकर, अब तुम आए हो मेरी जान सितारे लेकर, तुम भी चल दोगे लिए साथ हमारी खुशियाँ, और जिए जाएंगे हम रोग तुम्हारे लेकर। क्या बात है, जुगनू सीनियर हैं और कहते हैं कि जिया भाई माशाल्लाह बहुत आनंद आ रहा है। चलें, आपको आनंद आ रहा है ये तो अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद शांति भी मिलेगी। और नईम बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम लिसनिंग यू, योर प्रोग्राम इज़ गुड एंड योर वॉइस इज़ आल्सो टू गुड। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद सद्दीक दार, आपके कुछ मैसेजेस आए हैं, बहुत शुक्रिया। और आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम आरजे ज़ियान जुम भाई, ऑल स्वीट लिसनर्स ऑफ एफएम 101 शो इज़ वेरी नाइस। मोहम्मद सदीक डार फ्रॉम नीलम वैली ठंडा पानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, बहुत शुक्रिया जी, जम्मू कश्मीर से हमें सुना जा रहा है। एक और कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
3: जी मैं लाहौर से रिमशा।
0: रिमशा, रिमशा मुझे अभी तक आपकी आवाज़ की पहचान नहीं हो सकी, क्या वजह इसकी?
3: मुझे तो आपकी आवाज की पहचान हो गई है गुड्डू, कैसे कर लेते हैं आप?
0: बस कर लेता हूँ मैं, देख लें कर लेता हूँ।
3: मैं इतनी पुरानी कलर बन चुकी हूँ आपकी, फिर भी आपको मेरी आवाज की पहचान नहीं हुई।
0: नहीं हुई, क्या करें इसका, इसका क्या हल निकाला जाए?
3: वो कहते हैं ना कि कुछ आज ऐसे होते हैं कि वो इंसान की मतलब आवाज से पहचान जाते हैं। कोई मतलब मेरा कोई ऐसा डायलॉग आपको अभी तक कोई याद नहीं हुआ?
0: आपका कोई डायलॉग है ही नहीं
3: जिससे आप पहचान जाएं, मेरे सलाम से पहचान जाएं?
0: सलाम तो सब करते हैं, आपका तो कोई डायलॉग है ही नहीं।
3: अच्छा
0: अच्छा, क्या कहना चाहोगी रिमशा?
3: भाई मैं एतबार पे आपको यही बात करूंगी कि भाई एतबार मेरा किसी ने तोड़ा था, जिस तरह कांच को तोड़ा जाता है।
0: किसने तोड़ दिया था आपका एतबार?
3: भाई बस था कोई जिसने एतबार को इस तरह तोड़ा था, चकना था कि
0: थी,
3: था या थी, अब दोनों में से कोई भी आप लगा ले।
0: चले था लगा लेते फिर हम।
3: नहीं आप थी लगा ले।
0: नहीं आपने कहा था।
3: नहीं नहीं मैंने कहा था लगाए या थी लगा ले।
0: नहीं पहले तो आपने यही कहा था ना, बस कोई था,
3: आप थी लगा ले।
0: नहीं अब तो पकड़ी गई हो ना।
3: चलिए जो भी है, लेकिन भाई हर किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता जरूर है। अभी जो भाई आए थे वो कह रहे थे ना कि मैंने दूसरों के एतबार टूटते हुए देखे हैं, लेकिन जब तक भाई हम लोगों का खुद का एतबार नहीं ना टूटता, हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं मिलती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, दर्द की शिद्दत क्या होती है, हमें पता नहीं चलता जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं मिलती, उसे बर्दाश्त करना जब तक हमें आता नहीं है। हम लोग इंसान है ना, एतबार हम इसलिए कर बैठते हैं कि अगला बंदे को हम इस तरह देखते हैं कि जी वो हमें टाइम दे रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो हमें अच्छा मशवरा दे रहा है, वो हमारी बातों को समझता है, वो अपनी बातें शेयर करता है, चाहे हालांकि वो बातें ना शेयर करता हो, हमें लगता है कि वो हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन हम उससे एतबार कर बैठते हैं। हम मैं तो यही कहूँगी कि मैंने भी भाई ऐसी थी कि मैं ना एतबार करके ना अपनी हर बात बता देती थी, लेकिन उसके बाद जब मेरा एतबार टूटा ना, तो आप यकीन करें कि मैं इस तरह बिखरी थी ना कि जिस इंसान पे मैंने इतना एतबार किया, उसी इंसान ने मेरे एतबार को इतना ऐसे तोड़ा कि आप यकीन करें जैसे बचपन में खिलौना खेल के बच्चा फेंक देता है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद अब आप समझ गई हो, संभल गई हो?
3: मैं समझ गई हूँ बिल्कुल।
0: अब क्या करती हो? अब एतबार नहीं करती किसी पे?
3: जी जी,
0: अब किसी पे एतबार नहीं करती?
3: अब मैं इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं करती।
0: और अगर हो जाए तो?
3: हालांकि छोटी सी छोटी बात भी हो ना, तो वो भी मैं किसी से इतनी जल्दी शेयर नहीं करती।
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया।
3: मैं बंदे के जो है ना, बंदे के रवैये से पहचान जाती हूँ इस बंदे पे एतबार करना चाहिए कि नहीं।
0: बिल्कुल ठीक। चलो रिमशा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
3: अब आपने भी बताना है कि कभी आपका एतबार कभी किसी ने तोड़ा?
0: मेरा तो तोड़ते रहते हैं लोग।
3: नहीं कभी जिंदगी का, आप अभी हमसे पूछ रहे हैं, कभी ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में आया हो जिसने आपके एतबार
0: आते रहते हैं आते रहते हैं?
3: नहीं,
0: एतबार तो होता ही टूटने के लिए। चलो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ। थैंक यू रिमशा, थैंक यू।
3: चलिए
0: ठीक है। एतबार तो एक ऐसी चीज है जो कि बार बार टूटती है, और जिंदगी में आने वाले लोग, असल में एतबार का ताल्लुक होता है हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से, हमारी तवक्कोआत से। हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मौजूद इर्द गिर्द लोगों के साथ बहुत सारी तवक्कोआत वाबस्ता कर लेते हैं। ये तवक्कोआत कहीं ना कहीं जाने अनजाने में होती हैं। कभी कभी यूं भी होता है कि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो ही गलत होती हैं, अगला शख्स वही होता है जैसा वो होता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपना मान लेते हैं, किसी पर एतबार कर लेते हैं, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा गुंजाइश दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, इस चीज़ की एक्सेस दे देते हैं कि आप हमें हर्ट कर सकते हो, आप हमें नुकसान पहुंचा सकते हो, आप हमें धोखा दे सकते हो। जिस तरह हमारा घर होता है ना, हम अपने घर की कितनी हिफाजत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने घर के जो दरवाज़े हैं उनको बंद करके रखें, वहाँ पे हम कुंडी लगा के रखें, लॉक करके रखें। हम जब भी आएँ या जाएँ तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी खिड़कियाँ सही तरीके से बंद हों, हमारे दरवाज़े मुकम्मल तरह से बंद हों। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद हम घर को कहीं ना कहीं देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि हर चीज़ मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते कि रात को सोने से पहले हम अपने घर का मेन दरवाज़ा खुला छोड़ दें। इवन के बाज़ुकात यूं भी होता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिनकी छतें इस किस्म की होती हैं कि उस छत पे डायरेक्ट किसी की एक्सेस नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो छत वाला दरवाज़ा होता है, चाहे किसी के घर की छत, किसी की दीवार हमारी दीवार से लगती हो या ना लगती हो, फिर भी हम अपनी छत का दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खौफ होता है, ये ख़तरा होता है कि कोई ऊपर से भी आ सकता है, घर के अंदर दाखिल हो सकता है। हम कहीं पर भी आते हैं जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा जो है वो बंद रहे। कोई भी शख्स चलता फिरता हमारे घर के अंदर ना दाखिल हो जाए। जो ही कोई अंदर दाखिल होगा तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसके पास कुछ कंट्रोल आ जाएगा कि वो अंदर कमरों तक आ सकता है, वो अलमारियों तक आ सकता है, वो ऐसी जगहों तक आ सकता है जहाँ पे आपका कीमती सामान पड़ा हुआ है, आपकी ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो घर में आके किसी फ़र्द को नुकसान पहुँचा सकता है। तो हम अपने घरों की इस एतबार से बड़ी हिफाजत करते हैं, हम हमेशा अपने घरों को लॉक करके रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़ात के बहुत सारे हिस्सों को खुला छोड़ा होता है। हमने बहुत सारे लोगों को खामखा की अपने अंदर आने की एक्सेस दी होती है, हमने वहाँ पे कोई लॉक नहीं लगाया होता, कोई पासवर्ड नहीं लगाया होता। कभी कभी हम कुछ लोगों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा खुली किताब बनकर जी रहे होते हैं, और यकीन जानिए लोग यहाँ पे इंतज़ार में बैठे होते हैं कि जो ही आप उनको ज़रा सा भी कोई लूप होल दो तो वो नकब लगाएं। जिस तरह कोई चोर घर में घुस के आपका कीमती सामान चोरी कर सकता है, लेकिन वो फिज़िकल होता है, यूं हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जब खुद एक खुली किताब बने होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी की एक्सेस उनको दे रहे होते हैं, हम अपने बहुत सारे राज उनको दे रहे होते हैं, हम उनको बहुत से अपनी ज़िंदगी के कीमती नाजुक लम्हात की एक्सेस उनको दे रहे होते हैं। फिर वही लोग तो होते हैं जो फिर बाद में मजाक उड़ाते हैं, वही लोग तो होते हैं जो बाद में उन चीज़ों को ताना बना के हमारे मुंह पे मारते हैं, फिर वही लोग तो होते हैं जो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारी उन बातों को, हमारे उन एक्शंस को, हमारे रिएक्शंस को, हमारे जज्बात को, हमारे इमोशंस को वो फिर दुनिया में नीलाम करते हैं, वो लोगों को बताते हैं, फायदा उठाते हैं।

बातचीत के सिलसिले होते रहेंगे, मैं चाहूँगा कि अभी हम एक मज़ीद गाने की तरफ बढ़ते हैं। गाने से वापस आके फिर हम आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से शुरू करते हैं। एक गाना जो बड़ा दिल चाह रहा था कि इसको शामिल करूँ प्रोग्राम में, यार दे वेड़े आई टप टप गलियां। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, इस गाने के बाद मिलते हैं।

वेल जी, कुछ मैसेजेस हैं, इनको शामिल करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे एक मैसेज आया है, और शिमजा कहती हैं कि सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ मोहब्बत एंड व्हाई डू वी फॉल इन लव। मोहब्बत क्या है और हम क्यों मोहब्बत में पड़ जाते हैं? क्या लगता है आपको कि मोहब्बत क्या है? और लोग अगर मोहब्बत में चूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, मोहब्बतों में पागल हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, चाहे किसी एक ख़ास मुद्दत के लिए ही क्यों ना हो, एक थोड़े से वक्त के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज ज़रूर आती है जब वो मोहब्बत से मुकम्मल सरशार होता है, मोहब्बत में टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है, एक जुनून किसी कैफियत होती है, एक अजीब से हिजान किसी कैफियत होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कैफियत होती है, ये सारी की सारी ज़िंदगी आपके साथ ठहरती नहीं है। मोहब्बत की कैफियत हो, जुनून की कैफियत हो, इश्क से सरशारी की कैफियत हो, तो इसका एक ज़माना होता है, इसका एक पीरियड होता है। किसी का बहुत लंबा हो सकता है, किसी का शॉर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप सारी की सारी ज़िंदगी एक ही तरह की कांस्टेंट, बिल्कुल एक जैसी कैफियत में रहें। कभी ये बढ़ जाती है, कभी ये कम हो जाती है, कभी कभी तो यूँ भी होता है कि वो मोहब्बत और उसकी शिद्दत आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। कभी कभी वो दोबारा से जागती है, दोबारा से पनपती है, दोबारा से अंगड़ाई लेती है। कभी इसका दर शदीद होती है कि आपको दुनिया और माफिया की खबर ही नहीं होती, दुनिया जहान की किसी चीज़ की खबर नहीं होती, आप हर चीज़ से बेनियाज हो जाते हैं, हर चीज़ से बेखबर हो जाते हैं, सिर्फ एक यार और उस यार की सूरत होती है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत क्या है, इसका जवाब शायद ही कोई दे सके कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत हर किसी के लिए एक अलग अलग रूप रखती है, अलग अलग एंगल रखती है, अलग अलग जाविया रखती है। मोहब्बत हर किसी के साथ एक अलग अंदाज में पेश आती है। हो सकता है मैं जिस तरह से मोहब्बत को बयान करूं, कुछ लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल हो और कुछ लोग कहें कि नहीं यार, एड्डी भी कोई गाल नहीं। एक ही डेफिनेशन होती है, उसको कोई रद्द कर लेता है, कोई कच्चा पक्का आधा मानता है आधा नहीं मानता, और कोई मुकम्मल तौर पे मान लेता है। हर किसी के अपने अपने तजुर्बे होते हैं, अपने अपने रंग होते हैं। तो मोहब्बत को डिफाइन करना किसी एक जुमले में, किसी एक सेंटेंस में, किसी एक ख़ास कैफियत में, वो किसी किसी के लिए तो हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो सकता। मोहब्बत हो जाए या मोहब्बत की तरह के मिलते जुलते और बहुत सारे जज्बे हो जाएं, इमोशंस हो जाएं, दुनिया में, दुनिया जहान में सदियों से इसके ऊपर बेशुमार लिटरेचर लिखा जा रहा है, गाने बनाए जा रहे हैं, गीत लिखे जा रहे हैं। नौजवान अपने अंदाज में मोहब्बत को बयान करते हैं, उधेड़ उम्र वाले और फिर अगली उम्रों वाले, वो अपने अपने अंदाज में मोहब्बत को और इश्क को बयान करते हैं। कोई मोहब्बत को किसी शख्स से जोड़ देता है, कोई मोहब्बत को किसी जानवर से जोड़ देता है, कोई शख्स मोहब्बत को इस वतन से, इस मिट्टी से, यहाँ के रहने वाले लोगों से जोड़ देता है, कोई शख्स इस मोहब्बत को अपने घर से, घर में रहने वालों से जोड़ देता है, कोई शख्स मोहब्बत को अपनी माँ से, कोई बाप से, कोई बहन से, कोई भाई से, कोई बीवी से, कोई शोहर से या बच्चों से जोड़ देता है, कोई मोहब्बत को तसव्वुफ के रंग में ले जाता है।

0: कोई रब से जोड़ देता है, कोई उस्ताद से, कोई मुर्शद से, किसी बुजुर्ग से, किसी बाबे से, उस मोहब्बत को मंसूब कर देता है। हर शख्स मोहब्बत को अपने अपने अंदाज में देखता है, रंगता है, महसूस करता है। हर किसी की अपनी अपनी तरह की शिद्दतें होती हैं, हर किसी के अपने अपने तरह के एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं। आप मोहब्बत में घिरे हुए होते हैं, आपको मोहब्बत भरी एक शायरी सुनाई जाती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। शायद इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि उसके अंदर शायर जो बात कर रहा है, वो जिस तरह के जज्बे बयान कर रहा है, वो आपके जज्बों से ज़रा डिफरेंट तरह के थॉट्स रखते हैं। फिर आप किसी और का कलाम सुनते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, इसने क्या सच्ची बात कही है, क्या दिल की बात कही है। कभी आप किसी मंज़र को देख के मोहब्बत में डूब जाते हैं और किसी और शख्स के लिए वो बड़ा एक आम सा नज़ारा हो सकता है, हालांकि वो भी एक मोहब्बती इंसान है। लेकिन हर किसी के जाविये, हर किसी के पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं ना। सिद्रा कहती हैं, मोहब्बत नाम है दो आज़ाद हम ख्याल हम मिजाज रूहों के एक धुन में मगन होने का। अगर हम इस चीज़ को, इस जुमले को मोहब्बत की डेफिनेशन मान लें कि मोहब्बत नाम है दो आज़ाद हम ख्याल हम मिजाज रूहों के एक धुन में मगन होने का, तो यक तरफा मोहब्बत किधर जाएगी। यक तरफा मोहब्बत में तो एक ही धुन पे दो लोग मगन नहीं होते, दो अलग अलग मंजिलों और रास्तों के मुसाफिर होते हैं। एक को तो शायद खबर भी नहीं होती, या अगर खबर हो भी तो दूसरा अपनी ही आग में जल रहा होता है, मुसलसल जल रहा होता है, सुलग रहा होता है, उसके सुलगन की महक हर जगह तक पहुंच रही होती है। लेकिन बस उस शख्स को जिससे वो एक तरफा मोहब्बत करता है, उसी को उसकी खुशबू का एहसास नहीं होता। मैंने कहा ना कि मोहब्बत की हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। हम मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस रखते हैं, तारीफ रखते हैं, जिसको अपने हिसाब से मनपसंद लगती है वो उसको उठा लेता है और दूसरा उसको रिजेक्ट कर देता है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम मोहब्बत पर यकीन ही नहीं रखते, ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ भी नहीं होती, ये सिर्फ बचपने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है। बहरहाल बहरहाल बहरहाल 1:35 हो गए हैं, आपकी कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हमीद की बात कर रहा हूं, रावलपिंडी से।
0: हमीद भाई ठीक हैं आप, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या कहना चाहेंगे?
1: कोई तबार की बातें हो रही हैं,
0: न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। आप जिस बात का जो जवाब देना चाहें, जो कहना चाहें।
1: चार शेर सुनाते हैं आपको हजीम सोर साहब के, लंबी तमहीद में बांधते हैं।
0: जी सुनाइएगा।
1: बड़े मुख्तसर से हैं कि हजीम सोर साहब ने कहा था कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है।
0: वाह वाह।
1: यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई जूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: कई जूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। और इसमें एक शेर था कि न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर, न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है।
0: वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: और शेर देखिए कि तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं,
0: तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं।
1: हाँ तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है।
0: वाह वाह वाह वाह, मगर वो क्या करे जिसका
1: भरोसा
0: भरोसा
1: टूट
0: टूट
1: जाता।
0: जाता है।
1: और आखिरी शेर है कि किसी से इश्क करते हो फिर खामोश रहिएगा,
0: वाह
1: किसी से इश्क करते हो फिर खामोश रहिएगा, जरा सी छेद से ये आईना टूट जाता है।
0: कमाल हो गया कमाल हो गया, बहुत
1: तो उसने
0: अच्छे,
1: दुआओं में याद रखिएगा।
0: बहुत शुक्रिया हमीद साहब, बड़ा ही खूबसूरत कलाम आपने शामिल किया प्रोग्राम में,
1: जजाकअल्लाह, जजाकअल्लाह,
0: बहुत
1: सलाम।
0: शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।

0: शिमजा कहती हैं कि सर क्या नौजवानी में मोहब्बत हो सकती है? मोहब्बत का क्या है, मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है, मोहब्बत नौजवानी में भी हो सकती है, बचपने में भी हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है, बुढ़ापे में भी हो सकती है। मोहब्बत के बहुत सारे रंग होते हैं। मोहब्बत, मैंने कहा ना कि हर किसी के लिए मोहब्बत की डेफिनेशन, मोहब्बत का जाविया या मोहब्बत का एंगल बड़ा डिफरेंट होता है। और हम अपनी ज़िंदगी के हर दौर में किसी ना किसी चीज़ से मोहब्बत तो करते ही हैं। मोहब्बत ही तो होती है, माँ से मोहब्बत भी तो मोहब्बत होती है, अपने किसी दोस्त से मोहब्बत भी तो मोहब्बत ही होती है, अपने घर से मोहब्बत भी तो मोहब्बत होती है, अपनी चीज़ों से मोहब्बत भी तो मोहब्बत होती है, किसी के दिए गए किसी ख़ास तोहफे से मोहब्बत भी तो मोहब्बत होती है। वो तोहफा चाहे आपके वालिद ने, वालदा ने, किसी बहन भाई ने, मामू ने, चचा ने, ताया ने, खालू ने, खाला ने, नानी दादी या किसी अंकल ने, किसी ने वो तोहफा दिया हो तो आपको वो तोहफे से मोहब्बत हो जाती है, उस दिए गए लम्हे से मोहब्बत हो जाती है। किस मोहब्बत की बात करें, कैसे बात करें? और मोहब्बतों में अगर एतबार टूटा हो तो फिर कभी कभी हमें मोहब्बत नाम से भी नफरत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है।
1: अभी आ रही है सर,
0: थोड़ी बेहतर हुई है जी।
1: माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा शो और बहुत ही प्यारी आवाज़ आपकी। जिया भाई, परवेज अख्तर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी परवेज भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे?
1: काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है, तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो सर।
0: क्या मुबारक हो?
1: ये जो ईद गुजर गई ना, गुज़श्ता।
0: अच्छा, गुज़श्ता ईद मुबारक हो। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि आपको वेबसाइट मुबारक हो। अच्छा ठीक है। लाहौर में भी बेहतर मौसम है, काफ़ी बेहतर मौसम है। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है।
1: वैसे सर बाजी है ना,
0: आपने कोई हैंड फ्री लगाई है?
1: कर रहे थे अखबार की, नहीं आ रही आवाज़।
0: आपने कोई हैंड फ्री तो नहीं लगाई हुई?
1: नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगाया सर।
0: फिर गायब किधर हो जाते हैं आप?
1: बिल्कुल नहीं आ रही आवाज़,
0: बहुत चली जाती है, दूर से
1: तो
0: हो जाती है।
1: कायम है सर, मोहब्बत पे दुनिया कायम है, मोहब्बत ना हो तो ये निज़ाम धर्म बरम हो जाए।
0: ठीक हो गया।
1: दूसरे के साथ धोखा करता है, यकीन करें वो अपने साथ धोखा कर रहा होता है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मैं तो ये कहता हूँ, आप आवाज़ आ रही है सर?
0: जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
1: मैं कहता हूँ मोहब्बत से तो दुनिया ये कायम है, जो किसी के साथ धोखा करता है वो खुद यकीन करे अपने साथ धोखा करता है। हमें चार बातों की समझ आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के इल्म में है, और फरिश्ते हमारा जो कुछ हम जुबान से बोलते हैं वो लिखते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की वीडियो बना रहे हैं वो। ये हमें मरने के बाद, हमें बाद में पता होगा। हमें यकीन है कि क़यामत आएगी, मौत भी आएगी, हमें हमारा हिसाब किताब भी होगा। ये बस हमने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, यकीन करें, अच्छी सोच रखें तो सब कुछ मिल जाता है, अल्लाह भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है सर। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन
0: चलें, बहुत शुक्रिया आपकी बात हम तक पहुँच गई, आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल की।
1: रेडियो से भी हमें मोहब्बत है। तमाम सुनने वालों को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी जनाब मोहतरम, नईम बलोच बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: जी नईम साहब, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो बातें तो माशाल्लाह आप सारी बहुत ज़बरदस्त और डीप कर रहे हैं, बट आप एक बात कर रहे थे जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें आपने ये बोला था कि हम एक्सेस दे देते हैं अपनी किसी और को।
0: जी,
1: तो आपकी इसी बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हम किसी को अपनी एक्सेस दे देते हैं ना, तो हम एक शख्स के गिर्द हमारी ज़िंदगी सारी जो है ना वो घूमने लग जाती है। यू नो, एक इंसान उसका एक सिंगल मैसेज हमारा दिन बना देता है और एक सिंगल मैसेज हमारा दिन बिगाड़ देता है। तो बेसिकली कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि किसी भी इंसान का खुद को इतना आदी ना बनाए कि वो शख्स जब चाहे रिमोट कंट्रोल आप उसका उसके हाथ में हो आपका, वो जो चाहे कर ले। और आप एतबार की बात कर रहे थे
0: जी,
1: एतबार के बारे में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि लोग अक्सर जब किसी का एतबार तोड़ देते हैं ना, तो वो दोस्तों में या ऐसे गैदरिंग में बैठ के बहुत खुश होकर बता रहे होते, प्राउडली फील कर रहे होते कि जी फलां को बेवकूफ बना लिया। बेसिकली वो उसको बेवकूफ नहीं बनाया होता, उसने तो खुद को बेवकूफ बनाया होता है, क्योंकि जो धोखा होता है ये एक सर्कल में घूमता है। ठीक है, जहां से ये चलता है वहां इसे वापस जरूर आना होता है। तो आप ये किसी को अगर धोखा देते हैं तो ये ना सोचे कि वो बेवकूफ था, बल्कि ये सोचे कि उसने एतबार कितना किया आप पे और आपने खुद को भी धोखा दिया। तो कोशिश करें किसी को धोखा ना दे। बंदा अगर किसी के साथ, लेट्स सपोज कोई इंसान पसंद आ गया, अब एक कोई खातून किसी को पसंद आ गई, तो उससे दोस्ती करके उसे डायरेक्ट बता सकता है कि मुझे आप में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ यू। बल्कि उसे सपने ना दिखाए, वो सपने जो वो देखने लग जाए और एट द एंड उन्हीं सपनों को जो है ना आप आग लगाएं और साइड पे हो जाएं।
0: क्या बात है, तो आपको मुझे लगता है किसी ने धोखा दिया है।
1: ऐसा कोई दुनिया में इंसान है ही नहीं जिसको धोखा ना मिला हो।
0: नहीं, मुझे लगता है किसी ने आपको मोहब्बत में बड़ा शदीद धोखा दिया।
1: बिल्कुल, मुझे मोहब्बत में धोखा क्या, मुझे मोहब्बत में वो कहते हैं ना अंदर से जख्मी कर देना किसी इंसान को, रूह को जख्मी कर देना। वो कहते हैं मोहब्बत में बीच रास्ते में किसी को छोड़ना उसे कत्ल करने के बराबर, और मुझे किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था।
0: ओए होए होए, ऐसे कत्ल किया था कि मैं जिंदा भी हूँ, मेरी सांसें भी चल रही हैं, मैं सही सलामत भी हूँ, लेकिन अंदर से कहीं मर चुका हूँ।
1: यहाँ पे ज़िया भाई मैं यही कहूँगा कि कुछ हादसे जिंदगी में ऐसे होते हैं, इंसान बच जाता है मगर जिंदा नहीं रहता।
0: ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की और बड़ी खूबसूरत बातें की आपने।
1: थैंक यू।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जिया भाई, क्या हाल है, ठीक हो उस्ताद जी?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: असद अली जिला लाहौर से बात कर रहा हूँ जिया भाई।
0: असद अली
2: जी जनाब।
0: जी असद भाई, क्या कहना चाहेंगे?
2: सर मोहब्बत जो है ना अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए बात।
0: क्या बात
2: दुनिया की मोहब्बत कुछ भी नहीं है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत को मैं तजवीज नहीं देता, मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की, जो अपने माँ बाप की बात। इसके अलावा जो भी है ना सब धोखा है। वो नईम भाई वाली बात कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको धोखा ना मिला हो, तो ये एक मेरे भाई से छोटी सी बात गाली है, भी आपसे बात करना चाहता, आपका बहुत आपको पसंद करता है, ये छोटा भाई है मेरा।
0: जी जी, करवाए बात।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई?
2: जनाब मैं ठीक, आज मैं आपके शो में दूसरी दफा बात करना चाह रहा हूँ। पहली दफा जब मैंने बात की थी तो मेरा सवाल ये था कि एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, तब आपने मुझे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं था दिया।
0: अच्छा,
2: अब सेकंड दफा मैं ये अर्ज करूंगा कि क्या मोहब्बत से ज्यादा इश्क ताकतवर होता है?
0: अच्छा, आपको क्या लगता है?
2: मुझे तो ये लगता है ना कि ये जो मोहब्बत है ना, ये कोई मोहब्बत ये सब ये झूठ फरेब होते हैं।
0: अच्छा,
2: ये मुझे इश्क भी यकीन है।
0: इश्क क्या होता है?
2: इश्क वो चीज है कि जो बंदे को ना मतलब के जो सूली तक पे पहुंचा देती है। जो बादशाह होता है उसको फकीर तक बना देती है, जो फकीर होता है उसको बादशाह भी बना देते हैं, इश्क ये चीज है।
0: अच्छा
2: हाँ,
0: यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या होता है, आपको क्या लगता है कि इश्क मतलब बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह?
2: हाँ, बादशाह को बाद दफा ऐसा देखा होगा कि आपने कई कहानियां भी पढ़ी होंगी आपने कि इश्क जो होता है ना कि वो बादशाह को ना गली मोहल्लों तक पहुंचा देता है, कि लोगों के घरों तक मांगने तक मजबूर कर देता है। और जो फकीर होता है उसको भी बादशाह बना देता है वो इश्क।
0: ये कोई बात बन नहीं रही, बैठ नहीं रही मुकम्मल तौर पे, तस्वीर वाजे नहीं हो रही।
2: आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना।
0: चलो चलो ठीक है ठीक है, आज हमारा मौजू ये नहीं है, आप कोशिश किया करें कि आप मौजू पे आया करें, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम इस तरह के किसी मौजू पे एक मुकम्मल प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट सा दे देता हूँ कि क्या मेरे नज़दीक क्या चीज़ होती है, बाकी
2: यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन करके मुझे बताएं प्लीज।
0: चलो, आपने अपना नाम क्या बताया था?
2: मेरा नाम है अब्दुल्ला।
0: अब्दुल्ला, चलो अब्दुल्ला थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू,
2: ओके, अल्लाह हाफिज़।
0: अच्छा, वक्त बड़ा थोड़ा है, सवाल इन्होंने ऐसा फेंका है हम पे कि इसके ऊपर तो कई प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, अब 10 मिनट में क्या बात हो, लेकिन चलें एक दो कॉल्स लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
3: जिया भाई, मैं लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
0: नवीद साहब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं?
3: जी दम दम खुश थे, हर दम खुश। आप सुनाएं सर, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र, क्या कहना चाहेंगे
3: सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि धोखे वाली बात तो जिंदगी के भाई की बात ठीक है, धोखा तो जिंदगी में हर इंसान ने खाया हुआ
0: है।
3: वो कोई दोस्ती में खाता है, कोई इश्क में खाता है, वो कोई किसी चीज में खाता है।
0: तो ठीक।
3: कोई तो रोटी के साथ, कोई तो मैंने कहा रोटी रोटी के साथ भी खा लेते हैं अगर किसी से ना मिले तो।
0: ठीक है, तो आपने किसके साथ खाया था, रोटी के साथ खाया था, किसी और चीज के साथ खाया था? दो घंटे से आप क्या सोच रहे हैं?
3: मैंने कहा दो घंटे से मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी कॉल कब मिलेगी।
0: तो अब तो मिल गई आपकी कॉल।
3: तो जिया भाई, मैं आपने कहा ना कि लोग किसी से सवाल नहीं करते, मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, अगर आप मुझे जवाब देंगे तो बता देंगे मुझे।
0: जी बताएं क्या सवाल है, आप भी सवाल पूछ लें।
3: जी सर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक सेकंड लिए मेरी कॉल जो ऑफर कर सकते हैं आप?
0: नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो सकते।
3: मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर मैं ना बेसिकली हूँ ब्लाइंड हूँ आँखों से, ठीक है? आपने मुझे देखा भी, आपके पास आया हुआ था छोटी वाला दिन?
0: जी जी आए थे, मुझे याद आ गया।
3: जी तो सर, मुझे मैं कई जगह पर ना डॉक्टरों को चेक करवा चुका हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप उनसे रब्ता करें जो किसी को ना डोनेट करते हैं, आँख से डोनेट करते हैं। मैंने उस बारे में सवाल करना था कि कोई मालूम है आपको या किसी से पूछ के मुझे आप बता सकते हैं?
0: नहीं ब्रदर, अभी फ़िलहाल तो इस सिलसिले में मुझे कोई मालूम नहीं है। आप यूँ करें कि आप फेसबुक पे जो हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है, इस पे जो हमारी पोस्ट होती है उस पे कमेंट किसी से करवा दिया करें, तो अगर कोई लोग जो देख रहे होते हैं वो फिर आपसे वहाँ पे रापता कर लिया करेंगे।
3: चलो ठीक है सर, मैं फिर ऐसा करूँगा क्योंकि मेरे पास तो कीपैड वाला मोबाइल है मैं।
0: नहीं, आप किसी से, आप उस दिन भी जब आए थे तो अपने किसी दोस्त के साथ आए थे, तो आप किसी से मैसेज वगैरह करवा लें, कहीं पर आप इस तरह ना कमेंट छोड़ दिया करें, तो फिर इंशाल्लाह मे भी आपको कोई हल निकल आए।
3: ठीक हो गया, वही आपने कहा था ना अगर, मैंने आपकी बात को सोच के फिर मैंने कहा चलो भाई से जवाब ले लेते हैं।
0: चलें, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, थैंक यू कॉल करने के लिए,
3: बड़ी मेहरबानी थी आप भाई,
0: बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।
4: सलाम जिया भाई, क्या हाल है?
0: जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहे हैं?
4: बड़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था, आप तो पहचान लिया करें, अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर।
0: हाशमी साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले चलो मैं वजाहत बाद में करता हूँ, नवीद भाई के लिए बहुत सी दुआएं हैं। तो श्रीलंका में याद आते हैं, वहाँ कानून है, हर बंदा जो होता है ना अपनी डेथ के बाद वो आंखों की एहतियात देता है। तो यहाँ कई ट्रस्ट हैं, हर रहमत आई ट्रस्ट है, न्यू हॉस्पिटल इस पे शोभा है, पदेशी ना हो तो आई ट्रस्ट में हो जाता है। न्यू हॉस्पिटल की जो ऑप्थमोलॉजी का शोभा है ना, तो एक बंदे को मैंने भी कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, पदेशी ना हो।
0: जी ठीक हो गया। आप ये डिटेल्स जो है ना, अगर कोशिश करें ये डिटेल्स आप अगर ये फेसबुक पे जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे आप लिख के अगर दे दें तो ज्यादा बेहतर है।
4: मैं कोशिश करूंगा। दूसरी बात, ये छोटी सी, मैं करना तो नहीं चाहता था, ये छोटी सी मेरी बहन आई थी हमना
0: जी
4: जर्मनी का, जो मैं भी एक दफा जर्मनी गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बर्लिन देखा है, फ्रैंकफर्ट देखा है, म्यूनिक देखा है। तो यही मिलन शो हो रहा था, दिशान नासिर थे, आसर अली सैयद थे, मोहम्मद यूसुफ थे और बेग साहब थे, खुरम बेग
0: जी।
4: तो निशान भाई को शक पड़ गया इस लड़की पे, उन्होंने पूछा आप जर्मनी के बड़े बड़े शहरों के नाम बताएं। तो खामोशी छा गई और बर्लिन को इन्होंने ना बेहम कहा, और फिर उन्होंने कहा चलो जर्मनी में अपना तारफ करा दे थोड़ा जर्मन जबान में। तो उन्होंने अपनी कार डिस्कनेक्ट कर दी। तो मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने बस ऐसी बात की, मैंने कहा यार ऐसे आप दूसरा बोला करें, आप अपनी ठीक है, आप लाहौर आई हुई हैं या जर्मनी से जो भी है, लेकिन इतनी चीजें तो आपको, बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए ना। चलो बात खत्म हो गई। तो आज आप बात कर रहे थे इतबार की, चचा गालिब ने कहा था ना, तेरे वादे पे जिए तो जान पे छूट जाना, खुशी से मर न जाते घर अखबार पहुंचता। तो जिस तरह फिर जबरान जो लबनान के फर्जी थे, उन्होंने कहा था जब तुमने अपना राज हवा पर जाहिर कर दिया, अब हवा इसे पत्तों पर जाहिर कर दे तो तुम हवा को बुरा मत कहो।
0: बिल्कुल ठीक है।
4: तो जब आप अपना राजनीति को देखते हैं तो दोस्तों, दोस्तों को अगर दुश्मन बन जाए तो बहुत ज्यादा लॉस होता है आदमी का। तो मेरा ख्याल है कि आदमी को सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, किसी को अपना राज नहीं देना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
4: आखिर में लाहौर के बड़े प्यारे शायर हैं कुंवर एजाज राजा, उनके चंद शेर फिर ज्यादा।
0: जी जी बताइए, सुनाइए।
4: अपनी ख्वाहिश में जो बच गए हैं वो दीवारों दर छोड़ दें, धूप आंखों में चुभने लगी है तो क्या हम सफर छोड़ दें।
0: वाह वाह।
4: दस बरदार हो जाए फरियाद से और बगावत करें, क्या सवाली तेरे कसरे इंसाफ जजीरे दर छोड़ दें। जब लुआबे दहन अपना तरियाक है, दस्तो बाजू भी हैं, सांप गलियों में लहरा रहे हैं तो क्या हम नगर छोड़ दें। शहर यारों से डर जाए हम, हक प्रस्ती से तौबा करें, अपने अंदर भी एक आदमी है इसे हम किधर छोड़ दें। और मक्का हमने देखा है बिरानों का रुख, कुवर शहर की संत है, शहर वाले अगर बेखबर हैं तो क्या बेखबर छोड़ दें।
0: क्या बात है, क्या बात है।
4: जो बच गए हैं वो दीवारों दर छोड़ दें, धूप आंखों में चुभने लगी है तो क्या हम सफर छोड़ दें। दुआ में याद रखें।
0: बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल जी, आज का ये प्रोग्राम था, 12:56 हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट रह चुके हैं आपके और हमारे मज़ीद साथ में। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि मेरे साथ थ्रू आउट मौजूद रहे, प्रोग्राम सुनते रहे, मैसेजेस करते रहे। जाते जाते मैं आपके फटाफट मैसेजेस शामिल करना चाहूँगा। सिद्रा कहती हैं कि यकतरफा मोहब्बत तो नहीं होती, ये तो मेहनत है जो हम बेकार किया करते हैं। और ठीक है, वही बात होगी ना कि हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, और उसको अपनी मोहब्बत ठीक, अपनी डेफिनेशन ठीक और दूसरे की गलत लगती है। तो इसमें हम कोई एक हतमी बात नहीं कर सकते। यूं तो फिर होता है, और जब होता है तो फिर तो होता है। हाय, बिनते सदीक हैं, कहती हैं एतबार बहुत सोच कर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपने मोहब्बत अंधी हो सकती है लेकिन उसे अंधा होने के साथ साथ बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात कही आपने। उस्मान बिन इमदाद कहते हैं कि जद्दा से सुन रहा हूँ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। बिनते सद्दीक का कहना है कि जो सब कुछ खोकर मुस्कुरा रहा है, कुछ खोने पर रोया तो होगा। क्या बात है। इसके अलावा आपने और काफ़ी ज़्यादा अशार और पोइट्रीज़ भेजी हैं बिनते सदीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फराफजाल का मैसेज आया है, प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, शुक्रिया। नईम बलोच हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिनते सदीक का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आरजे ज़ियान जुम ब्लेस यू आमीन, वेरी नाइस शो, अच्छी बात की आपने, लोग हमारी कमज़ोरी ही पकड़ते हैं, कोई भी बात हो वो पकड़ कर सर मुझे बहुत नॉलेज मिलता है, आप सब आरजे से खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमें सुनते रहे, मैसेज करते रहे, फीडबैक देते रहे, आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का बेहद शुक्रिया। कुछ दोस्त मेरे प्रोग्राम की टाइमिंग्स पूछ रहे हैं, आपको बताता चलता हूँ कि मेरा प्रोग्राम वीकली 2 दिन आता है, मंगल को और जुमे को, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात 12 से 2 बजे तक, और अब तकरीबन 2:02 हैं, आपका मेरा साथ तकरीबन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप मुझे गूगल पे सर्च करते हैं ज़िया अंजुम या दा ज़िया अंजुम के नाम से, तो यकीनन मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाऊंगा इसी सेम यूआरएल आईडी से, सेम हैंडल से, दा ज़िया अंजुम। इस प्रोग्राम को आप अभी यूट्यूब लाइव पे भी देख रहे थे, और इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग मेरी कोशिश होती है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने YouTube चैनल्स पे भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूं, तो इन प्रोग्राम्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आप YouTube चैनल से देख सकते हैं। उसके अलावा भी मज़ीद काफ़ी कंटेंट होता है जो आप देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा YouTube पे दा ज़िया अंजुम या Google पे जाके सर्च कीजिएगा दा ज़िया अंजुम। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत रहती है। मेरा मानना है कि जो लोग दूसरों की दुआओं में आबाद रहते हैं उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो दुआओं की अशद ज़रूरत रहती है। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

एक खदिश को सिली उमरी

तो फिर आप उनका नाम लेवा क्यों होते, आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं।